0: और मैं कुछ नहीं कर सकता महाराज, करना भी यही चाहिए शिव भक्तों को। इसके अलावा, इन तीन कर्मों के अलावा अन्य कर्म में प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। और आगे के श्लोकों की व्याख्या अब कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।
1: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
2: ஓம் சிவாய நமஹ. நீங்கள் கேட்கவிருக்கும் அடுத்த நிகழ்ச்சி சிவ கீர்த்தனைகள். இதில் நீங்கள் கேட்கவிருக்கும் பாடல் உன் பெருமையை. பாடியிருப்பவர் செம்பல் ஸ்ரீ வைத்தியநாத பாகவதர். வணக்கம். ஓம் சிவாய நமஹ.

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम.org, नाउ वी आर लिसनिंग टू केदीचनाद सुप्रभातम, प्रेजेंटेड बाय श्री गायत्री वेंकटराघवन। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।

वन्याय वन्याय च कक्ष्याय कक्ष्याय च वन्याय वन्याय च कक्ष्याय च कक्ष्याय कक्ष्याय च कक्ष्याय च कक्ष्याय च कक्ष्याय च कक्ष्याय च कक्ष्याय कक्ष्याय

0: एकत्रिंशत् प्रथमः
1: ओम ओम नमः शिवाय।
2: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
1: ओम नमः शिवाय।

0: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Dakshinamurti Stotram, presented by Swami Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
1: So, unko bhi to bhandara milna chahiye. तो वो भी कभी कभी भंडारा काम है तो बढ़िया महात्मा ले जाकर रख देते हैं, वो भी समझते हैं कि बढ़िया मिठाई है, क्वालिटी का मिठाई आ गया आज। कोई घटिया महात्मा होगा तो कहेगा ये तो थर्ड क्लास का मिठाई आ गया, और बढ़िया महात्मा होगा तो क्वालिटी का मिठाई आ गया है। बड़े पूंछ हिला हिला के खाते होंगे मछली, आशा यही और कुछ नहीं। मछली सब उसको मांस अंड अंश को खा जाए और हड्डी सब जमीन के अंदर रह जाए, पानी के अंदर गंगा के अंदर रह जाए, तो ये आशा से हम लोग जल समाधि। और वैदिक विधि है कि सन्यासी को निरग्नि कहा जाता है, निरग्नि इसीलिए कि वो सब अग्नि का परित्याग कर देता है, गारपत्ति अग्नि का भी वो परित्याग करता है और आहवनीय अग्नि का भी वो परित्याग करता है, दाक्षिण अग्नि का भी परित्याग कर देता है। तीनों अग्नि का परित्याग कर देने के कारण अंत में मसान अग्नि का भी उसको निषेध कर दिया गया, ये आशय और कुछ भी नहीं है। इसलिए सन्यासी को जलाया नहीं जाता, अग्नि संस्कार नहीं करते, क्योंकि वह गारपत्ते अग्नि छोड़ देता है, आहवनीय अग्नि छोड़ देता है। गारपत्ते अग्नि आप गृहस्थ हैं इसलिए घर में अग्नि जलाओगे, भोजन बनाओगे, भोज बतेर करोगे, तो वह गृहस्थ नहीं है इसलिए उसको घर में अग्नि जलाने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए गारपत्ते अग्नि नहीं, उसने परित्याग कर दिया। गृहस्थ आश्रम परित्याग किया तो गारपत्ते अग्नि का परित्याग कर दिया। और क्योंकि वह सन्यास ले लिया है, शिखा सूत्र का परिविसर्जन कर दिया, इसलिए वैदिक कर्म करने का अधिकार उसने खत्म कर दी। वैदिक कर्म करने का अधिकार खत्म हो गया, स्वाहा और स्वधा करने का अधिकार उसको, क्योंकि स्वाहा और स्वधा करने के अधिकार शिखा सूत्र वाले को है, शिखा सूत्र परित्याग करते ही स्वाहा और स्वधा करने का अधिकार उसको खत्म हो गया, तो आहवनीय अग्नि की भी उसने आवश्यकता नहीं पड़ी। आवनी अग्नि की आवश्यकता उसको होती है जो नित्य निरंतर स्वाहा सदा करता है, तो आवनी अग्नि खत्म हो गई। जब नहीं करना है तो आवनी अग्नि के बाद प्रथम आहुति दक्षिणा अग्नि में करनी चाहिए। ये आजकल जो घर घर में जगह जगह हवन करते हैं, गायत्री हवन कराते हैं, वह विधि से कराते हैं कि नहीं कराते हैं? अग्नि को पहले आवनीय करनी है और आहवनीय अग्नि को प्रथम आहुति के लिए दक्षिणा अग्नि बनाकर तब उसमें आहुति दी जाती है, तब बाकी आहुति उसी दक्षिणा अग्नि में दी जाती है। ये वैदिक विधि है। क्योंकि उसने शिखा सूत्र परित्याग कर दिया तो स्वाहा स्वधा करना नहीं, इसलिए आहवनीय अग्नि और दक्षिणा अग्नि दोनों का भी परित्याग कर दिया। तो तीन अग्नियों का उसने, किसने, सन्यासी ने तीन अग्नियों का परित्याग कर दिया हुआ होने के कारण गतार्थ ये हुआ कि चतुर्थ जो अग्नि है, मसान अग्नि, शमशान अग्नि है, उसका भी उसे निषेध कर दिया गया है, वो भी स्वरतः परित्याग। क्योंकि सन्यासी वैदिक विधि से जीते जी ही आठ पीढ़ी मातृपक्ष के और आठ पीढ़ी पितृपक्ष के सभी को पिंडदान करने के बाद अंत में अपना भी पिंडदान कर चुका होने के कारण, अंत्येष्टि कर्म भी वो पूरा कर चुका होने के कारण, मरने के बाद अग्नि संस्कार की भी विधि नहीं है। 16 संस्कार वो सब जब सन्यास लिया तो जीवात्मा के जो 16 संस्कार हैं सन्यास अवस्था में पूरा हो जाता है। पूरा हो जाने के बाद फिर वह नारायण स्वरूप हो जाता है, इसलिए सन्यास के बाद वह नारायण स्वरूप होता है, तब उसका अभिवादन करने के लिए यह शब्द प्रयोग किया जाता है कि नमो नारायणाय। हर सन्यासी को अभिवादन करने का यही वाक्य है कि नमो नारायणाय, कि आप नारायण स्वरूप हो गए, क्योंकि 16 संस्कार मरने के पहले ही आपने पूरा कर ली है, सपिंडी आपने पहले ही कर ली है और दैहिक कर्म आपने पहले ही कर ली है, विरजा हवन में और दैहिक कर्म सब पूरा हो गया है, प्रेस मंत्र के बाद वो नारायण स्वरूप हो गया, तो फिर उस सन्यासी को जलाना निषेध किया। तो अब वो शरीर है उसका तो कहीं ना कहीं ठिकाना लगाना है, तो क्या करें? तो दो विधि है, यदि पवित्र नदी आदि है सन्निकट में कहीं उपलब्ध है तो उस शरीर को पवित्र नदियों में जल समाधि करके विसर्जन करो ताकि जलचर जीव उसको खा जावे, या फिर घोर कहीं जंगल है तो जंगल में ले जाकर छोड़ दो तो नवचर जीव उसको खा जावे, या फिर किसी जमीन में उसको समाधि दो, उसको थल समाधि कहते हैं। जल समाधि, थल समाधि और वायु समाधि, ये तीन ही समाधि का विधान शास्त्र में है। लेकिन कोई भी व्यक्ति मानता नहीं है कि जंगल खुले में छोड़ दें और चील गिद्ध स्याल कुत्ते उसको नोचें, ये उसको मन में नहीं लगता। तो फिर ये दो समाधि देने की चलन आज भी है, जहाँ पवित्र जल है वहाँ जल समाधि देते हैं, और कहीं पवित्र नदियां उपलब्ध न हो तो जमीन खोदकर थल समाधि दी जाती है। तो हम पुरानी स्मृति सुना रहे थे आपको, उस स्मृति के साथ इतनी सारी व्याख्याएं हो गई आपको, लौकिक व्याख्या इसलिए सुना रहा हूं कि आपके घर में कोई संत महात्मा आवे और संयोग से हो खुदा न खास्ता आपके घर में उस शरीर छोड़ दिया तो क्या करें? तो घबराना नहीं है ना, घबराना नहीं है, हो सकता है कई बार ऐसी घटना घटी है, क्योंकि जिस घटना का हम स्मरण कर रहे हैं अभी वह इसी प्रकार की घटना से संबंधित घटना था। तो उस समय आप लोगों को क्या करना है? तुरंत वो सन्यासी शरीर छोड़ दिया तो दीवार के सहारे उसको ऐसे बिठा देना और पद्मासन लगा देना, बस सिर में त्रिपुंड लगा देना, समाधि लगाकर बैठा हुआ जैसा दिखेगा, बैठा है बैठा है, और गाड़ी कर लेना और ले जाके नर्मदा या गंगा जी भागीरथी में जल में छोड़ देना। अब क्योंकि बम्बई में तो जमीन ऐसे ही आसमान छू रही है, एक स्क्वायर फुट के लिए वो भी फ्लैट के स्क्वायर फुट, जमीन का स्क्वायर फुट तो कहां मिलने वाला है, तो 40-50 लाख-55 लाख हो गया एक स्क्वायर फुट फ्लैट की जमीन, और कहीं एक फ्लैट खरीद के वहां समाधि लगाना संभव नहीं होगा, जमीन खरीद के समाधि लगाओ तो जमीन है ही नहीं तो क्या करोगे? तो उसके लिए एक ही उपाय है कि ले जाओ गंगा जल, यहां नजदीक आपके नर्मदा है, ले जा सको तो सीधे हरिद्वार पुराओ गंगा जी, इलाहाबाद पुराओ पहुंचाओ, नहीं तो नर्मदा नजदीक है वहीं ले जाओ, ये सभी नर्मदा ले जाते हैं साधुओं को। हाँ, तो उसी तरह पंजाब में एक महिला सन्यासी माता जी किसी के घर में थी तो वहीं शरीर छोड़ दिया उन्होंने, अब क्या करें? वो तो घबरा गए, तो फोन किया, क्या करें महाराज? तो बोले सीधे टैक्सी में डाल के गाड़ी में डाल के ले आओ, हरिद्वार में यहीं विसर्जन कर देते हैं नीलधारा में। तो बेचारे ले आए, तो आप लोगों को हम पहले संकेत दे रहे हैं, हाँ? मान लो कि आज शाम को ही ये शरीर छूट गया तो घबराना नहीं, फाड़ से पद्मासन लगा के रख देना, हाँ? और एक गाड़ी करके ले जाके नर्मदा गंगा जी में विसर्जन कर देना पत्थर बांध के, हाँ, खूब गोद में चारों तरफ पत्थर डाल देना, पेटी बनाना लकड़ी का, और यदि लकड़ी का पेटी न बना पाए तो बोरी का कंथान ले लेना और डालना, उसी को गठड़ी बना लेना है, और चारों तरफ पत्थर डाल के छोड़ देना तो जमीन में बैठेगा शरीर लाश पत्थर के चलते, तो फिर मछली खाएंगे भंडारा, खूब जलचर जीव खाएंगे। तो वो लेके तो आए, लेकिन वो गृहस्त थे, गृहस्थी के संस्कार के अनुसार वो लंबा लेटा कर लिया, जैसे गृहस्थी लंबा ले जाते हैं, है? आदमी सोया जमी पर, लोग कहते मर गया, वो अपने था सफर में, वो आज अपने घर गया, लोग कहते मर गया, तो लंबा लेटा कर ले आए। अब वहां समाधि देनी विधि है तो पद्मासन में लगाकर बिठाना है, अब तो लंबा तो 8-10 घंटे में तो वो तो अकड़ गया लाश, तो अब पद्मासन कैसे लगाया जाए? हैं? तो वहां जल समाधि देते समय में आसन लगाना था, तो हमने जोर से उसके घुटनों में जोर से मारा एक पत्थर लेकर, हाथ में एक पत्थर उठा ली और एक हाथ से नीचे पकड़ लिया, एक हाथ से पत्थर से घुटनों में जोर से मारा, मारा तो उसके ढीले हो गए पार्ट पुर्जे, जब पार्ट पुर्जे ढीले हो गए तो ढीला हो गया तो दूसरे में मारा, दोनों ढीले हो गए, तो हाथ भी ऐसे लंबे थे तो यहां मारा जोर से पत्थर से, यहां मारा सब ढीले हो गए, नट बोल्ट तो नट बोल्ट का सही तो था, वो नट बोल्ट ढीले हो गए तो हाथ भी ढीला हो गया, पांव भी ढीला हो गया, तो बिठा दिया पद्मासन है। तो जब हम पत्थर मार रहे थे घुटने में तो उनके भक्त लोग कुछ आए थे, महिलाएं पुरुष भी थे, लेके जो आए थे उनके शरीर को, पार्थिव शरीर को, जब हम पत्थर मारने रहे, अरे रे रे रे रे, ये बाबा कैसा निष्ठुर है, कितना निर्दयी है, पत्थर से मार रहा है माता जी को, हे भगवान। अब माता जी वहां हो तब ना पत्थर से मारना न मारना इसके हिसाब करो है? वो तो पत्थर ही है, पत्थर के साथ पत्थर मारने में क्या आपत्ति हो। तो उनको तो वो अध्यास, पहले माता जी चैतन्य से संपर्क होने से उनका शरीर चैतन्य था तो ये मानते रहे, तो अभी भी वैसा ही है ऐसा मानते हैं, जबकि वो चैतन्य का संपर्क हट गया तो अब तो क्या हुआ, जड़ ही तो हुआ, तो अब क्या है? अरे रे रे रे, कहने की क्या जरूरत थी। जब उनको पद्मासन लगाया और पेटी में रखा शरीर को, तो वो पेटी पानी में न उतरे, उसके चारों तरफ पत्थर रखना था, हमने कहा लाओ पत्थर, तो पत्थर लाने वाले पत्थर लाए और हमने ऐसे फेंक दिया वो पेट बक्स के अंदर, उनके सिर में लगा जोर से, अरे रे रे, ये तो मार डाला। अरे वो पहले मर सकी है, मुर सकी है, तो क्या मार डाला। तो सब लोग गाली देने लगे मुझे, अरे कैसा निर्दयी है, कैसा निष्ठुर है, कैसा साधु है, अरे माता जी के सिर में ही मारा पत्थर से। लेव जी, जबकि हमारे सनातन धर्म की विधि है कि लाश को जलाते समय में हाँ कपाल क्रिया करनी पड़ती है, कपाल क्रिया समझते हो ना, आप लोगों ने किया है कि नहीं है कपाल क्रिया, अपने मां बाप के किया नहीं किया पता नहीं, कपाल क्रिया डंडे से मारना चाहिए खोपड़ी में, जब लाश जलती है जलने के बाद जो खोपड़ी रहता है उसको मारो पत्थर से, फोड़ो कपाल को, उसको कपाल क्रिया बोलते हैं। ठीक है, फोड़ने जब फूटे इस तरह न मारो तो ऐसे टच कर देना, आजकल यही करते हैं, वो समझते हैं कि उनको ज्यादा चोट लगेगा जोर से पत्थर मारने से, ये अध्यास है ये उन्होंने। तो वो हमको ये प्रसंग याद आ गया, इस प्रसंग से शरीर के साथ चेतना का संबंध होने से शरीर चैतन्य जैसा दिख रहा है, इसमें जो चेतना भाव है चैतन्य के संयोग से आया है, लेकिन परमात्मा में सूक्ष्म सत्ता है और जो चेतना है वह किसी की संयोग से नहीं, जैसे रसगुल्ले में मधुरता, जलेबी में मधुरता, खांड के शक्कर के संयोग से आया है, लेकिन स्वयं शक्कर में मधुरता किसी और के संयोग से नहीं है, है? शक्कर में जो मधुरता है मीठापना है किसके संयोग से है, ये उसका अपना स्वरूप है, और रसगुल्ले में जो मधुरता है वो शक्कर के संयोग से है, जलेबी में जो मधुरता है मीठापना है वह शक्कर के चाशनी के संयोग से, चाशनी में जो मधुरता है क्या है वो उसका अपना स्वरूप है, चीनी की जो मधुरता है वो तो अपना स्वरूप है किसी के संयोग से नहीं है। इसी प्रकार से परमात्मा में अस्तिता होनापना और भातिता चैतन्यपना ये उसका स्वरूप है, और वही उपादान कारण है उस अस्तिता और भातिता स्वरूपभूत ये जो परमात्मा है वह इस सारे जगत का उपादान कारण है। तो पूर्व पक्ष ने प्रश्न किया था कि परमात्मा जगत का उपादान कारण है तो जगत के हर पदार्थ में परमात्मा की अनुभूति होनी चाहिए, लेकिन किसी को भी परमात्मा की अनुभूति नहीं होती है तो उपादान कारण नहीं मानना चाहिए। इसका उत्तर यहां दे रहे हैं, परमात्मा की अनुभूति हो रही है, नहीं मान रहा है इसीलिए, नहीं जान रहा है इसीलिए वो परमात्मा को ग्रहण कर रहा हूं नहीं मानता, क्योंकि जगत के किसी भी पदार्थ को ग्रहण करोगे तो पदार्थ के ग्रहण के साथ ये दो वस्तु आपके द्वारा गृहित हो रहा है। दो वस्तु क्या, अस्तिता भातिता, उस वस्तु की होनापना वस्तु के ग्रहण के साथ आपको ग्रहण हो रहा है कि नहीं, घड़े को ग्रहण करते समय मिट्टी का ग्रहण हो रहा है कि नहीं आपसे? आभूषण को ग्रहण करते समय में स्वर्ण का ग्रहण हो रहा है कि नहीं? इसी तरह वस्तु को ग्रहण करते समय वस्तु की सत्ता का ग्रहण हो रहा है कि नहीं? ये सत्ता ही परमात्मा है, इसीलिए सत्ता रहित कोई वस्तु कोई ग्रहण नहीं कर सकता है, मिट्टी रहित कोई घड़ा का ग्रहण नहीं कर सकता है, सुवर्ण रहित आभूषण कोई ग्रहण नहीं कर सकता है। इसी तरह सत्ता रहित किसी भी नाम रूप को ग्रहण नहीं कर सकता है। तो हर नाम रूप में पेपर वेट ये नाम और इस आकृति का ये रूप, ये दोनों में सत्ता और भांति ये उसके उपादान कारण से आया है। इसका उपादान कारण कौन है? परमात्मा। परमात्मा यहाँ किस रूप में गृहित हो रहा है? सत्ता और भातिता, प्रकाशित होनापना, वस्तु का होनापना और वस्तु का जाना जानापना, ये दोनों परमात्मा से आया है। इसलिए परमात्मा से भिन्न ये नहीं है, जैसे मिट्टी से भिन्न घड़ा नहीं है, सुवर्ण से भिन्न आभूषण नहीं है, इसी तरह परमात्मा से भिन्न ये वस्तु नहीं है। परमात्मा का ग्रहण हो ही रहा है, इससे क्या सिद्ध हुआ कि सारे जगत का उपादान कारण परमात्मा ही है। ये बात इस तीसरे श्लोक के द्वारा शंकराचार्य जी स्पष्ट कर रहे हैं। सत्ता स्फुरत्ते भावेशु कुता गत्य संगते बिंबादि दर्पण न्यायात इत्थं पृच्छन् प्रबोध्यते। दो दृष्टांत दिया है, एक लोहे में गर्मी कहां से आई, तो इसको तो हर व्यक्ति यही कहेगा कि अग्नि संयोग से, अग्नि के संपर्क से आया है। लेकिन ये तो क्या हुआ कि मूर्त में अमूर्त का संयोग है, और ये जो संयोग से आया हुआ उष्णता, संयोग का तो वियोग होता ही है, संयोग का वियोग होता है। तब मूर्त अमूर्त संयोग, इसी तरह पहले लोहा होवे और उसके बाद अग्नि होवे, या पहले अग्नि होवे उसके बाद लोहा होवे, तब उन दोनों का परस्पर संयोग होवे, तब लोहे में अग्नि का संपर्क होगा, और तब कहेंगे कि ये लोहा गर्म है, लोहे में गर्मी का भाव प्रतीत होगा। तो इसी तरह शरीर अलग पहले सिद्ध है, आत्मा अलग पहले सिद्ध है, तो उस पहले सिद्ध शरीर में आत्मा का संयोग हुआ, तब ये शरीर में चेतना दिखाई पड़ा, ऐसा माना जाए क्या? इससे क्या सिद्ध हुआ कि आत्मा से संयोग होने से पहले शरीर अलग था, ये मानना पड़ेगा, और बाद में आत्मा अलग था और आत्मा और शरीर का संयोग हुआ, क्योंकि अंत में आत्मा और शरीर का वियोग होने पर आत्मा अलग और शरीर अलग प्रतीत होता है। तो वेदांत इस प्रकार के संयोग जन्य अस्थि और भातिता का सर्वत्र अनुभव करना नहीं चाहता है। तब फिर ये किस तरह माना जाए? तो जैसे वृक्ष में उन बीज के सारे संस्कार वृक्ष में विद्यमान हैं, आपके नींबू में खट्टापन आया कहां से? उसके बीज में वो खट्टापन थे, वो संस्कार था, वही संस्कार उसके अंकुर में गया, वही संस्कार उसके पत्तों में, शाखा में, फूल में गया, और वही संस्कार उसके फल में विद्यमान हुआ, और वही संस्कार कालांतर में फिर दूसरे नींबू में जाएगा, वही संस्कार कालांतर में फिर तीसरे नींबू में जाएगा। ये संस्कार किसी प्रकार के दर बदर वस्तुओं में संक्रमण होता रहेगा। इसी तरह आत्मा की सत्ता और स्फूर्तता भी बीज से वृक्षों की तरह इसी तरह से माना जाए, तो ये भी नहीं होगा। तो फिर कैसे है तो व्याप्त? तो वेदांत क्योंकि विवर्तवाद को मानता है, विवर्तवाद को मानने के कारण अन्य जितने भी दृष्टांत हैं वेदांत में मान्य नहीं होंगे। वो और दार्शनिक लोग भले मान लें तो वेदांत दर्शन नहीं मानता है। आत्मा की हर नाम रूप पदार्थ में सत्ता और स्फूर्णता का व्यापकता मानने का एक ही दृष्टांत है। जैसे विवर्तवाद, सर्प में होनापना कहां से आया? रस्सी से। सर्प दिखाई पड़ना कहां से आया? तो उसी रस्सी से। हाँ, डोरी में प्रतीयमान जो सर्प है उस सर्प के होनापना कहां से सिद्ध है? रस्सी से। दिखाई देनापना कहां से सिद्ध है? तो रस्सी से। अस्तिता और भातिता सर्प में उस रस्सी से आया है। रस्सी से भिन्न सर्प का अस्तित्व नहीं, रस्सी से भिन्न सर्प स्वतंत्र भासित नहीं होगा। इसी तरह विवर्तवाद जो अपने कारण में विवर्तित पदार्थ में जैसे अधिष्ठान व्याप्त होता है, ध्यान देना, मैं ये वाक्य को ध्यान दोगे तो वेदांत समझ जाओगे। जिस अधिष्ठान में जो वस्तु विवर्तित हुआ हुआ है, वह विवर्तित वस्तु में जिस तरह अपने अधिष्ठान के भाव व्यक्त होकर रहता है, उसी तरह ये सारे जगत के नाम रूपों में वह उपादान कारण भूत अधिष्ठान भूत उस परमात्मा सर्वत्र अस्थि और प्रकाश के रूप में ग्रहण हो रहा है, व्याप्त है। सत्ता स्फुरते भावेशु कुता गत्य संगते बिंबादि दर्पण न्यायात इत्तम पृच्छन् प्रबोध्यते। इसी को बोलते हैं यस्यैव स्फुरणम सदात्मकम असत्कल्पकम असत्कल्पार्थकम सदात्मकम भासते। ये अन्वय करना, जिसकी सत्ता और जिसकी स्फूर्णता, स्फूर्णता का अर्थ भासता, प्रकाशपना, जिसकी सत्ता और प्रकाशता को लेकर असत्कल्पार्थकम, असत नहीं, ध्यान देना, असत कल्पार्थकम, कल्पार्थक का अर्थ असत होता हुआ भी प्रतीत होने वाले को कल्पार्थक बोलते हैं। असत होता हुआ भी प्रतीत होने वाले वस्तु को असत कल्पार्थक बोलते हैं। असत कल्प असत के तुल्य, अर्थ माने प्रतीयमान पदार्थ, असत कल्पार्थक। तो असत जैसे खरगोश का सिंह, वो असत है, असत कल्पार्थक नहीं है, वो असत है, सत प्रतिशत असत है, असत कल्पार्थक नहीं। जैसे बंजा का पुत्र, वह सर्वथा असत है, असत कल्पार्थ नहीं। जैसे आकाश कुसुम, सर्वथा असत है, असत कल्पार्थ नहीं। लेकिन रज्जु सर्प सर्वथा असत नहीं है, असत कल्पार्थ है। सीपी में चांदी, वह असत नहीं है, अपितु असत कल्पार्थक है। असत होता हुआ भी प्रतीत होने वाले को असत कल्पार्थ कहते हैं, असत होने के कारण ही प्रतीत न होने को वह असत कहते हैं। असत और असत कल्पार्थ में इतना ही अर्थ है, इसलिए असत कल्पार्थ का नाम हो गया मिथ्या। असत होना अलग चीज है, मिथ्या होना अलग चीज है। मिथ्या को अप्रतीत नहीं कहते कहीं भी, प्रतीत होता है परंतु जिस रूप में प्रतीत हो रहा है उस रूप में वह नहीं रहता है, इसीलिए उसको मिथ्या कहते हैं। बंध्या का पुत्र तो प्रतीत ही नहीं होता है, इसलिए वह असत। रस्सी में जो सर्प है वह प्रतीत होता है लेकिन खोजने जाओ तो नहीं मिलता, इसलिए असत कल्पार्थक, इसलिए मिथ्या। वेदांत जगत को असत नहीं कहता है, असत कल्पार्थक कहता है, यानी मिथ्या कहता है। इस बात को फिर स्पष्ट करेंगे, और ज्यादा विचार करने जाएंगे तो समय बढ़ जाएगा, और आगे कल स्पष्ट करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते।

0: You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org.
1: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Hindi Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Nayanmar Puranam. The title is Yeyargon Kalikkam Nayanar, presented by Singapore Shankara Narayanan. Thank you. Om Namah Shivaya.
2: Om Namah Shivaya. दोस्तों, अभी हम सुनेंगे एयरफोन कलिकामर संत की कहानी। इंद्रदत्त के युग की बात है। चोल प्रदेश में कावेरी नदी के उत्तरी तट पर तिरुमंगलम नामक क्षेत्र में सेनापति रूप में राजकार्य करने वाले परिवार में कलिकामर का जन्म हुआ। कालांतर में इन्होंने भी सेनापति के रूप में बहुत कीर्ति प्राप्त की। कलिकामर एक निष्ठावान शिव भक्त थे। तिरुपुंकुर मंदिर में कलिकामर ने आवश्यक मरम्मत करवाई और वहीं सेवाकारी में लगे रहे। उनका दृढ़ मत था कि विभूति धारण करने वाले शिव भक्त के चरण युगल ही संसार में नित्य वस्तु हैं। भक्त सुंदर कथा का एक प्रसंग है, जहां सुंदर ने अपनी पत्नी परवई के पास शिव को अपने दूत के रूप में भेजा था। इस घटना से कलिकामर के मन में सुंदर पर अत्यंत रोष का भाव था। उनका तर्क था कि सेवक सुंदर ने स्वामी शिव को दूतकारी देकर अपना सेवक बनाने की भूल की है और यह अक्षम्य अपराध है। वास्तव में सुंदर तो शिव के प्रति साक्ष्य भाव से भक्ति कर रहे थे, परंतु कलिकामर सुंदर के प्रति आक्रोश से युक्त थे। ईश्वर इच्छा प्रबल है। एक बार कलिकामर को असाध्य उदर रोग हो गया। स्वयं शिव ने स्वप्न में आकर कहा, वत्स सुंदर के आए बिना तुम्हारा यह रोग ठीक नहीं होगा। कलिकामर ने ईश्वर की इस बात को काटते हुए उत्तर दिया, भगवान कई पीढ़ियों से हम तुम्हें स्वामी और स्वयं को सेवक मानते आए हैं। सुंदर तो अभी कल के बच्चे हैं जो तुम्हारी कृपा के पात्र हुए हैं। सुंदर सभा में तुम्हारे प्रति कटु शब्द बोले, फिर भी तुम उन पर कृपालु हो। मेरे जैसे पुराने भक्त का इस नए भक्त द्वारा स्वस्थ होने के स्थान पर पीड़ा के साथ मर जाना श्रेयस्कर है। इधर भगवान ने सुंदर को कलिकामर के घर जाने की प्रेरणा दी। सुंदर कलिकामर के घर पहुंचे। उनको किसी बात की जानकारी न थी। वे सहज भाव से अपने साथियों सहित कलिकामर के घर की ओर चल दिए। यह जानकर कलिकामर ने तलवार से अपना पेट काटकर शरीर त्याग दिया। कलिकामर की पत्नी ने मृत शरीर को घर में छिपा दिया और आगत अतिथि और उनके साथियों का स्वागत किया। तो सुंदर को घटना का पता चल ही गया। इस आत्महत्या के लिए स्वयं को दोषी मानकर सुंदर ने अपने पेट काटकर अपने आप को भी ईश्वर लीला से पीड़ित जानकर अपना जान त्यागने की दृढ़ संकल्प कर लिया। पर चमत्कार हो गया, ईश्वर लीला से कलिकामर जीवित हो गए। प्रभु कृपा से दोनों भक्त घनिष्ठ मित्र बन गए। एयरकोन कलिकामर की कथा का वर्णन करते हुए पुराणकर सुकिलर ने 380 पदों में सुंदर के संदर्भ का वर्णन किया और कलिकामर का वर्णन 25 पदों में पूरा हो गया। भक्तों की विशेषता प्रकट करने के लिए यह एक अच्छा प्रसंग है। पेट दर्द पैदा करने वाले भगवान स्वयं पत्नी में आकर उनका समाधान देते हैं, पर भक्त उनके समाधान को नहीं अपनाते। अपने स्वीकृत मार्ग के लिए विघ्न डालने वाले चाहे ईश्वर स्वयं ही क्यों ना हो, भक्त प्राण उत्सर्ग करना श्रेष्ठ मानते हैं। इन्हें अपना लक्ष्य अपना सिद्धांत ही सर्वोपरि लगता है, परंतु प्रभु भी लीला द्वारा भक्त को अपनी कृपा का वरदान दे देते हैं। ओम नमः शिवाय।
0: ओम नमः शिवाय। Dear listeners of Shaivam.org Radio, the size of our audio collection continues to grow day by day. We now host more than 25,000 audio recordings. In order to make these extensive resources more accessible and beneficial to our radio listeners, we have reorganized our program schedule. Thirumurai Music and Thirumurai Discourses will be broadcast on Thirunariya Tamilosai. Philosophical Discourses and Periyapuranam Lectures in Tamil will be broadcast on Shivatattvam. Programs in languages other than Tamil will be broadcast on Shaivalahari. As a result of these changes, there will be some adjustments to program timings. We trust that you will kindly accept these schedule changes with understanding and patience. We also request you to encourage your relatives and friends to listen to and benefit from our radio services. ओम नमः शिवाय।
3: ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम.org, द नेक्स्ट प्रोग्राम इज स्पिरिचुअल डिस्कोर्स। इन दिस यू आर अबाउट टू लिसन शिवानंद लहरी, प्रेजेंटेड बाय आदिगुरु शंकराचार्य जी। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।
4: ओम ध्याये नित्यं महेशं रजत गिरिनिभं चारुचंद्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवरा वेतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात्स्तुतममरगणैर् व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववंद्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुकं गौड़पदं महंतं गोविंद योगींद्रमथास्य शिष्यं श्रीशंकराचार्यमथास्य पद्मा पादंच हस्तामलकंच शिष्यं तंत्रोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मत् गुरुं संततमानतोऽस्मि। विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेयः प्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे। ओम शांति शांति।

ഉദയംപുരി ആശ്രമം അയോജിത് കൃഷ്ണകുമാർ ദയ്യ ഗീതാചിന്തൻമാല അന്തർഗത് ആദിഗുരു ശങ്കരാചാര്യ വിരചിത് ശിവാനന്ദ ലഹരി इस स्तोत्र के आधार पर लगातार चार वर्षों से चर्चा चल रही है, तो इस बार इस 100 श्लोक का स्तोत्र की व्याख्या पूरा करने का लक्ष्य है। अभ्यास के लिए श्लोक नंबर 91 गाड़ी स्टेशन में पहुंच रही है। आद्य विद्या ऋद्गता निर्गता सिद्ध विद्या ऋद्या ऋद्गता तत्प्रसादात् सेवे नित्यं श्रीकरं त्वत्पदाब्जं भावे मुक्तिर्भाजनं राजमौले दूरीकृतानि दुरितानि दुरक्षराणि दौर्भाग्य दुख दुरहंकृति दुर्वचांसी सारं त्वदीय चरितं नितरां पिबन्तं गौरी समामिह समुत्तर सत्कटाक्षैः कोमलकलाधरमौलौ

भर्गम वदति चेते सदार्चतः स्मरति अतिमृदुलौ मम चरणौ अतिकठिनं ते मनो भवानी स इति विचिकित्सां संत्यज शिव कथमासीत् गिरौ तथा वेशः धैर्यांकुशेन निवृतं रवसा रवसादाकृष्य भक्तिश्रृंखलया पुरहर चरणानाले हृदयमदेवं बधान चिन्यंत्रयी। प्रसंग चल रहा है। आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी भगवान शिव के सान्निध्य में ये सारी भाव व्यक्त कर रहे हैं। जीवन की जो कृतकृत्यता है, व्यक्ति जब जीवन की कृतकृत्यता का अनुभव करता है, भगवान को धन्यवाद दिए बिना रह नहीं सकता। भक्त भगवान को इस तरह कहते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य जी भगवान शिव से इस तरह कह रहे हैं, आद्य विद्या हृद्गता निर्गता सिद्ध

0: রাজ্যম ভাবে মুক্তির ভাজনম রাজমৌলি इस श्लोक में संबोधन है राजमौले। भगवान शिव का नाम है राजमौली, राजमौलेश्वर। संबोधन में हे राजमौले, राजाओं के सिर मुकुट, संसार में जितने भी बड़े बड़े राजा हुए हैं, चाहे वो नरेश हो, चाहे वो देवेश हो, राजेंद्र हो, चाहे देवेंद्र हो, सबकी शोभा सिर में मुकुट नहीं है तो उनकी किसी की शोभा नहीं है। राजाओं की शोभा उनके सिर में दिव्य रत्नों से युक्त मुकुट से होती है। अभिप्राय यह है कि भगवान शिव भक्ति यदि मस्तक में न हो, विचार में न हो, वो सब क्षुद्र जीवन है। और जब राजाओं की गणना होती है, चाहे देवलोक के राजाओं की गणना हो, चाहे नरलोक के राजाओं की गणना हो, सबसे ऊपर भगवान शिव महाराज है, राजमौले। मौल शब्द का अर्थ होता है मस्तक, सिर, सिर मुकुट। ये राजमौले संबोधन से भगवान शिव सर्वश्रेष्ठ हैं, ये भाव व्यक्त कर रहे हैं संबोधन से। ये राजमौले तत्प्रसादात, आपकी कृपा से, तत्प्रसादात, आपकी प्रसन्नता से, आपकी कृपा से, आद्या अविद्या हृदगता निर्गता आसीत, मुंडक उपनिषद में एक श्रुति आती है, मंत्र है, नायम आत्मा बलहीनेन लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन, एमे वेशा वृणुते तेन लभ्य तस्यै स आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। अयम आत्मा, बलहीनेन न लभ्य, ये आत्मा बलहीन व्यक्ति द्वारा प्राप्त करने योग्य नहीं है। नायम आत्मा बलहीनेन लभ्य न लभ्य, अयम आत्मा बलहीनेन न लभ्य। दोनों है, बलहीनी न भी प्रवचन ही न भी है, दो जगह अलग अलग पाठ है। नायम आत्मा प्रवचन ही न लभ्य, ये भी है। अयम आत्मा बहु प्रवचन न लभ्य, प्रवचन न लभ्य। जिस आत्मा को तुम चाह रहे हो परमात्मा को तुम चाह रहे हो, हम चाह रहे हैं, वो आत्मा प्रवचन के माध्यम से मिलने वाला नहीं है। न बहुना श्रुतेना, जीवन भर सुनते रहने से भी वो मिलने वाला नहीं है। फिर महाराज वो मिलता कैसे है? तो वहां उत्तर दिया है उपनिषद ने, स्वयं उपनिषद ने उसके उपलब्धि का माध्यम भी बता दिया है। एमे वेश वृणते तेन लभ्य, जिसने आत्मा को जैसे शास्त्र ने वर्णन किया है वह परमात्मा, वह आत्मा जिसको ये चाहता है कि ये मुझे प्राप्त कर ले, वृणुते, ऐसा आत्मा यम वृणुते, वह परमात्मा जिसका वर्ण कर लेता है, जिसका वर्ण कर लेता मतलब परमात्मा ये संकल्प करता है ये व्यक्ति मेरा अनुभव करे, ये व्यक्ति मुझे प्राप्त करे, मेरा दर्शन करे, मेरा अनुभव प्राप्त करे, एमे वे सब गुणते तेन लभ्य, तो उसी के द्वारा वो आत्मा उपलब्ध हो सकता है। ये बड़ा विचित्र मंत्र है। वह हमें वरण करे तब हम उसको प्राप्त करें, हम उसको वरण करें और हम उसको प्राप्त करें ऐसा नहीं है। वो हमारा वरण करे तब हम उसको प्राप्त करें। देखो इस मंत्र का ही अर्थ है। तो उसको क्या पड़ी है कि वो हमें वरण करता फिरे? उसको क्या पड़ी है? वो हमको खोजता फिरे, हमको वरण करता फिरे, उसको क्या पड़ी? क्या हमें वरण किए बिना उसका काम रुक रहा है क्या? और शायद आप और हम तो यही मानते हैं कि महाराज हमारे बिना आपका काम कैसे चल रहा है। तो कभी कभी तो हमें ऐसे भ्रांति होती है कि मन में न होता ईश्वर के संसार की व्यवस्था सब गड़बड़ाती, ये तो हम हैं इसलिए हम सब कर रहे हैं। जबकि ये बात नहीं है, उसकी व्यवस्था अपने ढंग की है। इस अनंत अनंत जीव समूह में हमारी गिनती किस में है बोलो? इस अनंत अनंत जीव समूह में हमारी गिनती किस में है? कहां हमारी गणना होगी? फिर भी हर व्यक्ति यही समझता है कि मैं प्रथम व्यक्ति हूं गणना के क्रम में। ये अहम है। और उपनिषद का मंत्र यह है कि वह स्वीकार करे तब हमको प्राप्त हो, उसकी कृपा हो तो हमें वो प्राप्त हो। पुराणों की कथा है, बड़ी विचित्र विचित्र कथाएं हैं पुराणों में। कहते हैं ब्रह्मलीन स्वामी अखंडानंद जी महाराज जी ने ऐसे मनोरंजनात्मक भाव से व्याख्या किया है। उनकी शैली बड़ा विचित्र है। कहते हैं कि एक बार जीवात्माओं को और परमात्मा दोनों के बीच में खेलने की इच्छा हुई, क्रीड़ा करें, मनोरंजन करें। तो कौन सा खेल खेले? बोले छिपने का खेल खेले, छुपा छुपी खेल खेले। आप लोग खेले कि नहीं? नहीं पता नहीं क्या खेले होंगे। बच्चे लोग करते हैं ना, कुर्सी के नीचे, टेबल के नीचे छुप जाते हैं। तो बोले कि ठीक है खेलते हैं। तो दो टीम हो गए, एक परमात्मा अकेला एक तरफ और सारे जीवात्मा एक तरफ। परमात्मा ने कहा कि तुम लोग सब छुप जाओ और हम अकेले खोजेंगे तुमको। जीवात्मा ने कहा कि ठीक है हम छुप जाएंगे। तो जीवात्मा छुपने लगे, अपने अपने समझ के अनुसार, अपने अपने हिसाब से सब जीवात्मा छुपे। कहां छुपेंगे भाई, जीवात्मा कहां छुपेंगे? कोई हाथी के शरीर में छुप गया, कोई चींटी के शरीर में छुप गया, कोई मक्खी के शरीर में छुप गया, कोई मच्छर के शरीर में छुप गया, कोई कॉकरोच के शरीर में छुप गया। यही तो छुपने का स्थान है। जीवात्मा छुपेगा तो कहां छुपेगा? यही सब छुपेगा। और तुम और हम कुछ समझदार थे तो इन इन शरीरों में छुप गए, है ना? बहुत से जीवात्मा थे, अपने अपने छुपने के कारण ये अलग अलग 84 लाख योनि हो गए, ये सब में छुप गए। और सब जीवों ने कहा कि महाराज अब हम अच्छी तरह छुप गए हैं, पता लगाओ कि हम कहां छुपे हैं, पता लगाओ। तो परमात्मा ने कहा
1: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू shaivam.org रेडियोस 24/7 स्पिरिचुअल चैनल्स फ्रॉम shaivam.org। ओम नमः शिवाय।
2: ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ shaivam.org, द नेक्स्ट प्रोग्राम इज स्पिरिचुअल डिस्कोर्स। इन दिस यू आर अबाउट टू लिसन पुष्पदंस शिव महिम स्त्रोत्र इन हिंदी, प्रेजेंटेड बाय स्वामी निष्ठानंद जी सरस्वती। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।
3: भारतवर्ष की शिक्षा क्या? वेदाध्ययन, स्वाध्याय अध्येतव्य, ये विधि वाक्य यावत मनुष्य के लिए वेदाध्ययन की बात करता है। किंतु आजकल तो यह है नहीं, क्योंकि हमारे यहां क्या है, हमारी शिक्षा जो है ये प्रत्यक्ष लाभ की अनदेखी करके अप्रत्यक्ष यानी कि पारलौकिक और मोक्ष लाभ के लिए ही ज्यादा है। हमारे यहां विद्या का जो स्वरूप है, विद्या के द्वारा जो प्राप्त होने वाला सुख है, वो पारलौकिक सुख या मोक्ष के सुख को ध्यान में रख के हमारे यहां जो है शिक्षा पढ़ाई जाती है। अब ये पारलौकिक सुख और मोक्ष सुख दिखता तो है नहीं, और इस लोक में वो कष्ट से प्राप्त किया जाता है, तो हम लोगों का ये ह्रास नहीं आ रहा। हम लोग तो ये सोचते हैं कि हम इस प्रकार की शिक्षा प्राप्त करें जिससे इह लोक बढ़िया से चल जाए, इह लोक में सुखी हो जाए, इह लोक में जो है कोई विघ्न या कोई कष्ट न रहे। तो हम लोग जो इस समय जो प्रचलित विद्या है, वो विद्या का फल इह लोक है या पारलौकिक या मोक्ष भी है, बस यह लौकिक है, इसलिए कहते हैं मेरा लड़का बढ़िया से पढ़ के निकल जाए, बढ़िया से उनको सर्विस लग जाए, फिर हम शांति से रहे। किंतु क्या यही जीवन है क्या? इससे आगे कोई जीवन नहीं है? इस शरीर छोड़ने के बाद हमको कहीं जाना ही नहीं है क्या? और वहां का कोई विचार नहीं करना है क्या? मोक्ष के बारे में या हम इस ये प्रपंच से छूटे, जन्म और मृत्यु के चक्कर से छूटे, उसके लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि वो दिखता नहीं है, इसलिए हमको उसके विचार करने की फुर्सत ही नहीं है। इसलिए भगवान को अर्जुन ने पूछा कि भगवान, जब शास्त्र विधि को नहीं जानते हुए भी परंपरा से, महापुरुषों के संदर्शन से, उनके समागम से, उनके वाक्य के ऊपर विचार करके या श्रद्धा करके जो कर्म करते जा रहे हैं, तो भगवान उनकी निष्ठा सात्विक है, राजसिक है या तामसिक है? तो भगवान ने कहा कि देखो अर्जुन, ऐसा है कि जो निष्ठा की तुम बात कर रहे हो, वो निष्ठा के निर्णय में कारण है उनकी श्रद्धा। किस प्रकार की उनकी श्रद्धा है, उससे वो व्यक्ति की निष्ठा का निश्चय होगा। इसलिए भगवान ने कहा श्रद्धा मयो यम पुरुष यो यत श्रद्धा स एव स। पुरुष श्रद्धा से श्रद्धामय है, इसलिए उनकी श्रद्धा किस प्रकार की है, उससे उनकी निष्ठा निश्चित की जाएगी। इसलिए सात्विक, राजसिक और तामसिक श्रद्धा, तीन प्रकार की श्रद्धा से व्यक्ति कर्म करता है, यज्ञ भी करता है, दान करता है, तप करता है, आहार करता है, इन सब में ये तीन चीज कारण होती है। यदि सात्विक श्रद्धा है तो वो सात्विक यज्ञ करेगा, सात्विक दान करेगा, सात्विक तप करेगा, सात्विक आहार करेगा। यदि उनकी निष्ठा या श्रद्धा राजसिक है तो वो राजसिक यज्ञ करेगा, राजसिक दान करेगा, राजसिक तप और आहार करेगा। यदि उनकी निष्ठा तामसिक है तो वो तामसिक यज्ञ, दान, तप, आहार वगैरह सारी क्रिया वो उसी अनुसार करेगा। इसलिए भगवान ने इन यज्ञ, दान, तप, आहार आदि का भगवान श्री कृष्ण ने 17वें अध्याय में तीन तीन प्रकार बताया। इसलिए हम उनको जाने कि ये सात्विक, राजसिक और तामसिक जो प्रकार है उसमें हमारे लिए क्या इष्ट है। हम अपने को नापे, देखे, जैसे कोई चीज को हम आंख से देखते हैं, ये देख रहा है कि ये टेबल है, किंतु हम कोई पूछे कि उनकी साइज बताओ, फुट से, इंच से साइज बताओ, तो आप आंख से देख करके बता सकेंगे? आप कहेंगे अच्छा मेजर टेप मंगा दीजिए, फिट मंगा दीजिए, मैं बता दूंगा अब कितना है। क्या तुमको आंख से नहीं दिख रहा है? तो कहें आंख से दिख तो रहा, लेकिन उनका माप कितना है वो आंख से नहीं दिखेगा। उसके लिए चाहिए मेजर टेप, चाहिए मेजर टेप ला करके बता देगा ये 3 फीट है या 4 फीट है, जो भी नाप आएगा वो बता देगा। ठीक इसी प्रकार से हम जो ये यज्ञ कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, आहार आदि सर्व क्रिया कर रहे हैं, वो आंख से तो बड़ी अच्छी लगती है कि हाँ कर रहे हैं इतना जरूर, किंतु वो सात्विक कोटि की है, राजसिक कोटि की है या तामसिक कोटि की है वो हम आंख से नहीं बता सकते हैं। जैसे माप के लिए मेजर टेप चाहिए, वैसे ही ये सात्विक आदि जो भेद है उन भेदों को जानने के लिए गीता का अध्ययन चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने इसको यहां बताया, उसको यदि हम पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा कि हम ये यज्ञ, दान, तप, आहार वगैरह जो भी क्रिया कर रहे हैं वो सात्विक कोटि के, राजसिक या तामसिक कोटि के, इसका निश्चय हम फिर कर सकेंगे। अब क्रिया तो बहुत है, आहार आदि भगवान ने सबके 3 प्रभेद बताए, किंतु हम लोग जो विचार करेंगे केवल तप के बारे में। तो भगवान ने इसी बात को कहते हुए तप के भी 3 प्रकार बताए। तप क्या है? तो भगवान जो है ये तप के बारे में, तप सात्विक, राजसिक और तामसिक प्रकार का है, किंतु भगवान जो है पहले ये बताना चाहते कि ये जो तप है अर्जुन, वो 3 प्रकार से तपा जाता है। शरीर से भी तपा जाता है और वाणी से भी तपा जाता है और मन से भी तपा जाता है। तो पहले हम लोग ये जाने तप के ये तीन प्रकार के, शरीर से तपा जाने वाला, मन से तपा जाने वाला और वाणी से तपा जाने वाला जो है वो तप का स्वरूप क्या है। भगवान देखिए पहले शरीर से तपा जाने वाला तप क्या है वो 14वें श्लोक में बता रहे हैं। आप लोगों के पास गीता है तो आप देखिए, भगवान श्री कृष्ण देखो कहते हैं शरीर से जो तप किया जाता है उनका तप का स्वरूप क्या है, क्या शरीर को सुखा देना। देखिए इससे आपको पता चल जाएगा कि आखिर तप का स्वरूप क्या है। भगवान श्री कृष्ण शरीर के तप के बारे में क्या कहते हैं, संसार में चाहे तप की कैसी भी प्रसिद्धि हो उसको एक साइड में रख दीजिए और गीता के संदर्भ में आप देखें कि शारीरिक तप क्या है। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्य महिंसाम च शारीरम तप उच्चते। देखिए शरीर से तपा जाने वाला तप, शरीर से हम तपस्वी है वो यदि देखना है तो क्या करना चाहिए, ये इनमें से हमारे अंदर कौन से गुण है। यदि इनमें से ज्यादा हमारे जीवन में गुण आए तो हमें बिल्कुल कह सकते हैं, शरीर हृष्ट पुष्ट होते हुए भी हमें कह सकते हैं कि हम तपस्वी है। देखिए क्या कहा, देव पूजनम, द्विज पूजनम, गुरु पूजनम और प्राज्ञ पूजनम। हम लोग पूजन तो करते ही रहते हैं, पूजन से तो हम विरत ही नहीं है। अब किसके पूजन से हम शरीर से तपने वाले तपस्वी कहे जाएंगे, तो देखिए देव पूजनम जो देवता का पूजन करता है वो मानो शरीर का तप कर रहा है। जो देवता, देवता से क्या, ब्रह्मा विष्णु शिव सूर्य और शक्ति, सनातन धर्म में ये पंच देव की पूजा उपासना प्रसिद्ध है। तो ये पांचों देव की जो पूजा उपासना पूजन करना वो है शरीर तप। अब देखिए इसलिए हमारे यहां जो है इन देवताओं की पूजा प्रसिद्ध हो प्रचलित हो, इसलिए हमारे यहां जो है इस प्रकार की सनातन धर्म की प्रणाली चली कि देवताओं की पूजा के लिए भी, पहले तो हमारे यहां यही कहा कि रोज तीन बार पूजन करना चाहिए, दो बार सुबह और शाम, कम से कम दो बार सुबह और शाम तो करना ही चाहिए, सूर्यास्त और सूर्योदय के समय भगवान की पूजा स्मरण करना चाहिए। जो रोज नहीं कर पाता है उनके लिए कहा हफ्ते में एक बार, तो कोई ऐसे एक वार को ले लीजिए जो सभी वार जो है देवताओं के संबंध में ही है हमारे यहां, चाहे आप रविवार से लेकर शनिवार तक देख लीजिए, उन सभी वारों के साथ देवता जुड़े हुए हैं। इसलिए हमको देवता ध्यान में रहे, हफ्ता में भी नहीं कर रहे हैं तो कहा कि 15 दिन में तो कर ही सकते, पूर्णिमा और अमावस्या को तो करना ही चाहिए। और कहते हैं कि हम लोग बंबई वासी समय कहां, महीने में भी नहीं हो पाता है, तो जब ऋतु परिवर्तन होता है या मास की संक्रांति होती है उस दिन जो है करना चाहिए। ऋतु परिवर्तन 2 महीना में होता, उस दिन भी नहीं तो कहा 6 मास में एक बार तो कर ही लो, उत्तरायण दक्षिणायन का अंत या शुरुआत होती है उस दिन कर लो, तब भी नहीं तो कहते हैं कि साल में एक बार तो कर ही लो, या कोई ऐसी पुण्यतिथि देवताओं का जन्मदिवस रामनवमी है, जन्माष्टमी है या और कोई देवताओं की जयंती है, उस समय तो जो है सारे साल में कुछ भी नहीं किया है तो एक दिन में वो निपटा दो, उस दिन पूरा का पूरा वो देव पूजन में निकालो। यहां तक कि साल भर में भी नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे? उससे आगे भी व्यवस्था है हमारे यहां, क्या करेंगे? कुंभ मेले में जाकर के स्नान कीजिए। वो आता है 6 साल में, एक जगह 6 साल में तो आता ही है, यहां तक कि 12 साल की हमारे यहां व्यवस्था है। 12 साल में कुछ नहीं किया तो 12 साल में एक बार एक ही जगह पड़ने वाले कुंभ में जाकर के स्नान कर लीजिए, देव पूजन कर लीजिए, तो वो 12 साल का लाभ मिल जाता है। ये है सनातन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता कि व्यक्ति चाहे किसी भी समय, किसी भी देश, किसी भी परिस्थिति और किसी भी काल में देव पूजन कर सकता है। तो देवता का पूजन वो शरीर संबंधी तप है, और द्विज का पूजन, द्विज का पूजन क्या है? द्विज क्या है? जिसका 2 बार जन्म होता है, समझ में आए? द्विज का अर्थ है जिसका 2 बार जन्म होता है। 2 बार जन्म, आप कहेंगे कि क्या वो 2 बार गर्भवास करता है क्या? तो एक तो गर्भवास से जब उनका निस्सरण होता है तो उस समय वो एक जन्म हुआ, फिर दूसरा जन्म उपनयन संस्कार से होता है। उपनयन संस्कार से ही व्यक्ति जो है द्विज बनता है, दूसरी बार उनका जन्म होता है और वे वेदाध्ययन के लिए योग्य बन जाता है। फिर उपनयन संस्कार होने के बाद उसके ऊपर 3 ऋण चढ़ जाते हैं। एक देवता का ऋण चढ़ जाता है, एक ऋषि का ऋण चढ़ जाता है, और पितृ का ऋण चढ़ जाता है। ये उपनयन संस्कार से पहले वो बालक है, उसके ऊपर कोई ऋण नहीं है, किंतु जैसे उपनयन संस्कार हुआ फिर वो ये 3 ऋणवान हो जाता है। फिर उनके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है कि मैं ये 3 ऋण का 3 ऋण से उऋण होऊं। इसे फिर आगे के लिए उनके लिए वेदाध्ययन है, वेदाध्ययन में वो वेद का अध्ययन करता है, और उसके बाद वेद में जो अधीत कर्म है वो कर्म की जिज्ञासा करता है, और जिज्ञासा के लिए वो कर्मानुष्ठान करने के लिए जैमिनी शास्त्र प्रणीत वेदांत वो मीमांसा का विचार करता है, जैमिनी सूत्र का, और तदनुकूल फिर वो कर्मानुष्ठान करता है। कर्मानुष्ठान करते हुए गृहस्थ आश्रम के बिताते हुए आगे जाकर के वो मोक्ष, इस तरह से प्रक्रिया पूरी। तो इस तरह ये द्विज है, द्विज का अर्थ है जैसे कहा, और द्विज का अर्थ है ब्राह्मण भी, क्योंकि उपनयन संस्कार तो त्रैवर्ण को होते हैं, केवल ब्राह्मण को होते ऐसा तो है नहीं, इसलिए ब्राह्मण भी ले सकते हैं, क्योंकि ब्राह्मण क्या है? वेद का अध्यापक है, और या तो वैदिक कर्म को करवाने वाला है, उनके द्वारा यदि आप कर्म करते तो वो कर्म हम तो जानते नहीं, तो उनके द्वारा किया गया है वो उसमें हम श्रद्धा करके करते हैं, तो वो जो हो जाता है सत्कर्म हो जाता है। और देखिए गुरु का पूजन, गुरु क्या है? गुरु से श्रोत्रि ब्रह्मनिष्ठ, और वैसे गुरु के पूजन के बारे में यहां पर टीकाकारों ने केवल गुरु शब्द का अर्थ जो ज्ञानदाता गुरु ही नहीं, मातृ पितृ आचार्य ऐसा कहा, माता पिता और आचार्य का पूजन हम लोग करते हैं क्या? माता पिता और आचार्य का पूजन ध्यान रखते हैं ना हम, माता और पिता का कि नहीं रखते? अच्छी बात है, ये होना ही चाहिए। माता और पिता का पूजन यानी कि तस्वीर का पूजन नहीं हो, नहीं तो आजकल देखने में तो ये आता है कि तस्वीर में तो बहुत बड़ी टंगी हुई है, बढ़िया हार भी पहनाया हुआ है, कोई आता है तो कहते हैं देखो ये हमारे माता जी की तस्वीर है, ये पिताजी की तस्वीर है, बहुत अच्छे थे, वो जीते थे पानी पिलाया, तो कहते हैं नहीं, श्राद्ध पक्ष तो चल ही रहा है ना, जीते जी पानी पिलाने के लिए हमारे पास समय नहीं है। 4 भाई है तो माता और पिता के 4 हिस्से कर देते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी के चार हिस्से हो गए तो और माता और पिता के भी चार हिस्से कर देते हैं। हमारे यहां माता और पिता को सेवा के लिए कहा कि उसका हरदम ध्यान रखना है, उसको कोई तकलीफ न हो। लेकिन आजकल क्या हो गया, मदर्स डे, फादर्स डे, साल में एक बार जाकर के वो गिफ्ट दे दो, 364 दिन उनका कुछ भी हो है। और कहते हैं हमने मदर्स डे मनाया, फादर्स डे मनाया, बड़े जोर शोर से प्रचार हो रहा है इसका। कितनी बड़ी विडंबना है कि हरदम जब माता और पिता का ध्यान रखा जाता है, हमारे वहां ऐसा आदर्श है, आज ये हालत है कि माता और पिता की हालत अब मैं कहने की तो ज्यादा जरूरत है ही नहीं। तो गुरु के पूजन के अंदर माता और पिता का पूजन ये एक बहुत बड़ी तपस्या है। माता और पिता का पूजन क्या है, गीता के संदर्भ में क्या है, शरीर का तप है। आप और कुछ भी कर रहे हैं और माता और पिता दुखी है तो वो शरीर का तप नहीं है। शरीर का तप सबसे बढ़िया तप यह है कि माता पिता और गुरु की, जैसे देव द्विज गुरु और प्राज्ञ, उसमें ये माता पिता भी अंदर है, उनका पूजन ये शरीर का तप है। और प्राज्ञ का पूजन लीजिए, प्राज्ञ का पूजन, प्राज्ञ क्या है, जो गुरु से भी व्यतिरिक्त है, देव से द्विज से भी व्यतिरिक्त है, किंतु जो तत्वविद है, जो तत्वविद है उनकी भी पूजा। और इतना ही नहीं, कहने के लिए तो बहुत है किंतु मेरे पीछे समय भी पड़ा हुआ है, और ये शरीर का जो है संपूर्ण तप भी मेरे को बता देना है, क्योंकि तीन श्लोक आज करने हैं और तीन श्लोक कल करने हैं, इसलिए थोड़ा आगे भी बढ़े। देखो शौचम, ये भी शरीर का तप है। शौचम क्या है, बाह्य और आभ्यंतर शुद्धि को कहते हैं शरीर का तप। बाह्य शुद्धि क्या है, देखिए हम लोग जो बाह्य शुद्धि में तो जो है बहुत आगे है, किंतु वो बाह्य शुद्धि जो है पवित्र है वहां पर हम पीछे है। कि हम जो बाह्य बहुत शुद्धि रखते हैं घर में, व्यवहार में, बाहर से कपड़े में, शरीर में, किंतु वो शुद्धि पवित्र कोटि की है, उस बात का ख्याल नहीं है। भोजन में हम पवित्र भोजन कर रहे हैं, पीने में हम पवित्र पी रहे हैं, भोजन के हम पवित्र खा रहे हैं, वहां कोई शुद्धि वो ख्याल नहीं है। क्या खाद्य पवित्र है या अपवित्र है, उनका विचार आजकल बिल्कुल समाप्त सा होता जा रहा है। लोग यदि अपेय और अखाद्य खाए तो उनको अच्छा समझा जाता है। ये सब जो है इनकी व्याख्या बदलती जा रही है इस समय, बड़ी विडंबना है। आगे और भी भगवान ने बताया आर्जवम। आर्जवम क्या है, देखिए जीवन में हर तरह से, शरीर से, मन से और कर्म से सरलता, दंभ का अभाव, सरलता, बिल्कुल ऐसा सरल रिजु जो हमारे पर सब विश्वास करे। औरों के विश्वास की हमको जरूरत तो है, किंतु हम अपने व्यवहार को विश्वासार्ह नहीं बना पा रहे। इस प्रकार से जो है हम अपने को ऐसे उलझा रखे हैं कि हमको विश्वासार्ह होने की आवश्यकता हमको जरूर दिखती है, किंतु विश्वासार्ह लक्षण हमारे अंदर आने चाहिए, वो लक्षण की बहुत कमी है। इसलिए हम फिर क्या कहते हैं, चद्दर ओढ़ लेते हैं। चद्दर समझ में है, विश्वासार्ह की चद्दर। और ऐसा कहते हैं देखो हम विश्वासार्ह है, और फिर कोई फंसता है तो चद्दर निकाली जाती है। समझ में आ गया, बहुत कहने की जरूरत तो नहीं है ना, यही है विश्वास। तो सरलता, इससे इनका अभाव हो उसको कहते हैं सरलता। इसलिए आर्जवम का अर्थ है अंदर से और बाहर दोनों तरफ से सरल जीवन।

0: से समझ में आए, प्रार्थना है भगवान की कि भगवान मैं अपना जीवन सरल बनाऊं इसलिए मैं पापों से दूर रहूंगी। तो ये आर्जवम। और भी देखिए, ब्रह्मचर्यम, अहिंसा इत्यादि। ब्रह्मचर्य क्या है? ब्रह्मचर्य है देखिए निषिद्ध मैथुनम, उसको कहते हैं ब्रह्मचर्य। निषिद्ध मैथुन का त्याग, यानी कि पुत्रोत्पत्ति के लिए ही जो है आवश्यक जो है मैथुन आदि क्रिया को करना, कहते हैं ब्रह्मचर्य। आजकल ये इसकी व्याख्या बहुत बदलती जा रही है। अभी दो चार दिन पहले ही एक बुद्धिजीवी ने लिखा था अखबार में कि ये पुत्रोत्पत्ति की जो बात है, ये मैथुन आदि का जो भोग का सुख है उसका स्वरूप ऐसे बदल जाएगा। उन्होंने बहुत नजीकी समय बताया था, किंतु हम नहीं मानते कि वो भारतवर्ष में हो सकता है अन्यत्र। उन्होंने ये लिखा था कि पुत्रोत्पत्ति की जहां तक बात है तो वो जो है कोई बोतल में वो होगा, गर्भवास की गर्भ में बालक को पालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गर्भ में बालक पलेगा तो शरीर का आकार बिगड़ जाएगा। ये चिंता के कारण वो जो प्रक्रिया है उसको एक अन्यत्र अलग से एक बोतल है, उस बोतल में उसको फलित किया जाएगा, वहां बालक का विकास होगा और हमारा शरीर बरकरार रहेगा और हम जो है इस तरह से अपने जीवन को भोग में बनाते रहे। ये व्याख्या बदलती जा रही है नहीं? तो जैसे हमारे यहां कहा कि मैथुन क्रिया केवल पुत्र उत्पत्ति के लिए है, और पुत्र किसके लिए है? पुत्र की आवश्यकता क्या है? पुत्रेण जय्यो अयम लोक कर्मणा पितृलोक विद्या देवलोक। यदि इस लोक में और परलोक में यदि जय प्राप्त करनी है तो उसके लिए पुत्र है। पुत्रेण जय्यो अयम लोक, बृहदारण्यक उपनिषद कहती है कि इस लोक में जय को प्राप्त करना है तो पुत्र की आवश्यकता है, और पितृलोक में जय प्राप्त करना है तो सत्कर्म की आवश्यकता है, और ब्रह्म लोक में विजय प्राप्त करनी है तो उपासना की आवश्यकता है। ये तीनों क्रिया की आवश्यकता हमारे जीवन में है। तो ये ब्रह्मचर्य की बात हुई संक्षेप से। और आगे भगवान ने कहा अहिंसा। अहिंसा मैंने देखो, जैसे अभी मैंने पहले ही बता दिया अहिंसा का स्वरूप, अशास्त्र प्राणी पीड़न का अभाव, प्राणी पीड़न का अभाव, किंतु कैसा? अशास्त्र प्राणी पीड़न का अभाव, इनको कहते हैं अहिंसा। और ये सब करना इनको कहते हैं शारीर तप। देखिए ये शरीर संबंधी तप है, इसलिए हम कहें कि हम शरीर से देखिए भूखा रहना ये भी आवश्यक है, ये नहीं, किंतु ये सब छोड़ कर यदि करे तो वो इससे आगे तो ये है कि ये शरीर संबंधी तपे। और वाणी के तप की बात है कि वाणी से यदि हम तप तपते हैं तो वाणी के तप के बारे में देखो, शरीर के संबंध में हमारी भ्रांति जरूर मिट गई होगी कि शरीर संबंधी तप जो है गीता में भगवान ने कैसा बताया है, ये सब क्रिया करने से शरीर संबंधी तप कहा जाता है, इसलिए ये करते हैं तो हम शरीर से तपस्वी कहे जा सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। वाणी के तप जो भगवान ने 15वें और 16वें श्लोक में बताया है, अब वाणी का तप क्या है उसको हम कल ही जहां तक हो सके संक्षेप से करने का प्रयत्न करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
1: हरि ओम। पूज्य महाराज जी के चरणों में वंदन। आज और कल महाराज जी द्वारा प्रवचन जो तप विषय पर रखा गया है, आज श्राद्ध पक्ष में माता जी से हमने ओम नमः शिवाय और भक्ति योग की बातें सुनी, और तप जो 2 दिन तक हमें किस तरह से हम ईश्वर को प्रसन्न करें और कैसे जीवन जिए उसके बारे में बताएंगे। पहली और दूसरी तारीख को जो हमारे स्वाध्याय प्रवचन में आने वाले हैं धर्मानंद जी महाराज, उनका प्रवचन दो दिन तक जो स्वाध्याय प्रवचन चल रहा है वेदांत परिभाषा, उसको सूचित करते हुए दो दिन उनके प्रवचन रहेगा प्रातः, जिससे स्वाध्याय में वेदांत परिभाषा कितना उपयोगी है अपने जीवन में उसकी बातें महाराज जी द्वारा बताई जाएगी। कल पूज्य धर्मानंद जी महाराज से फोन में बात हुई, एक दुखद घटना की भी उन्होंने बात की, आपसे मैं ये कहना चाहूंगा। 13 तारीख को कैलाश आश्रम के मंत्री और उनके पूर्व मंत्री, जो बहुत ही यंग संत थे दोनों, 30-32 साल की कुछ उम्र थी, और भी एक दो और दो तीन और भी गृहस्थ साथ में थे, कुछ देहरादून के आसपास में गाड़ी खड्डे में गिर जाने से उनका जो देवलोग वो दो संत पधार गए, उनको हम यहां वंदन करते हैं, आज उनकी शोरसी है। तो यह जो दुखद घटना हुई वो यहां से हम उनको प्रणाम करते हुए आज शोरसी विधि में ईश्वर को प्रार्थना करते हैं कि जो भी उनके साथ गृहस्थ भी रहे सबको उनकी आत्मा की शांति दे। हरिओम। बाकी कार्यक्रमों के बारे में स्वामी श्री प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट आयोजित श्री दिनेश जसंतलाल मेहता स्मृति व्याख्यान माला के अंतर्गत प्रसिद्ध भजनीक श्रीमती यशोदा गायक के भजन एवं पूज्य श्री हरिभाई कोठारी द्वारा वंदनीय जीवन इस विषय पर प्रवचन होगा। हरिभाई कोठारी का प्रवचन आज और कल होगा। यह व्याख्यानमाला 5:15 से 7:30 के दरमियान आज और कल चलेगी। आज के श्रेयस्मृति के यजमान है श्री किशनलाल केजरीवाला की ओर से श्रीमती बिजू देवी बरेलिया की ओर से श्री जेठालाल मेहता की ओर से श्रीमती मानसा गौरी जे मेहता की स्मृति में श्री श्रीचंद डी छाबड़िया की तथा वासुदेव छाबड़िया की ओर से श्रीमती उत्तमीबाई डी छाबड़िया की स्मृति में श्री कुलीन परसोत्तम भाई की ओर से श्री परसोत्तम भाई श्री मस्काय की स्मृति में मैसर संघवी ड्राई क्लीनिंग कॉरपोरेशन की ओर से श्री विजय भवानी दास के जन्मदिन के अवसर पर श्रीमती भानुबेन ए पटेल की ओर से श्री अम्बालाल जी पटेल की स्मृति में तथा श्रीमती सरस्वतीबेन बी पारेख की ओर से श्रीमती नानीबेन जे पारेख की स्मृति में। आप या आपके परिवार के सदस्य यहां उपस्थित हो तो पूज्य महाराज जी से आशीर्वाद एवं प्रसाद ग्रहण करें। अब शांति पाठ होगा। हरिओम।
2: ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते।

ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम.org, नाउ वी आर लिसनिंग टू केदीचनाद सुप्रभातम, प्रेजेंटेड बाय श्री गायत्री वेंकटराघवन। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।

वन्याय वन्याय च कक्ष्याय कक्ष्याय च वन्याय वन्याय च कक्ष्याय च कक्ष्याय कक्ष्याय च कक्ष्याय च कक्ष्याय च कक्ष्याय च कक्ष्याय च कक्ष्याय कक्ष्याय च नमो

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम डॉट ऑर्ग रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम डॉट ऑर्ग।
2: Dear listeners of Shaivam.org, the following is Rig Veda Sakala Shaka, Mandalam 1, Suktam 32. Thank you.

तथा एता भिरगच्छन्यदेता उपधीयन्ते दिशां धृत्यै पशवो वा इष्टकादारवत्यं वै पशवो मोपतिष्ठन्ते द्वे समीची पुरस्तादुभयत दद्याद्वे समीची पश्चादुभयत एवास्मै समीचः पशूनुपद

0: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Dakshinamurti Stotram, presented by Swami Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
1: So, unko bhi to bhandara milna chahiye. तो वो भी कभी कभी भंडारा काम है तो बढ़िया महात्मा ले जाकर रख देते हैं, वो भी समझते हैं कि बढ़िया मिठाई है, क्वालिटी का मिठाई आ गया आज। कोई घटिया महात्मा होगा तो कहेंगे ये तो थर्ड क्लास का मिठाई आ गया, और बढ़िया महात्मा होगा तो ये तो क्वालिटी का मिठाई आ गया है। बड़े पूंछ हिला हिला के खाते होंगे मछली, आशय यही और कुछ नहीं। मछली सब उसको मांस अंश को खा जाए और हड्डी सब जमीन के अंदर रह जाए, पानी के अंदर गंगा के अंदर रह जाए, तो ये आशय से हम लोग जल समाधि। और वैदिक विधि है कि सन्यासी को निरग्नि कहा जाता है, निरग्नि इसीलिए कि वो सब अग्नि का परित्याग कर देता है, गारपत्ति अग्नि का भी वो परित्याग करता है और आहवनीय अग्नि का भी वो परित्याग करता है, दाक्षिण अग्नि का भी परित्याग कर देता है। तीनों अग्नि का परित्याग कर देने के कारण अंत में मसान अग्नि का भी उसको निषेध कर दिया गया, ये आशय और कुछ भी नहीं है। इसलिए सन्यासी को जलाया नहीं जाता, अग्नि संस्कार नहीं करते, क्योंकि वह गारपत्य अग्नि छोड़ देता है, आहवनीय अग्नि छोड़ देता है। गारपत्य अग्नि आप गृहस्थ हैं इसलिए घर में अग्नि जलाओगे, भोजन बनाओगे, भोज बतेर करोगे, तब वह गृहस्थ नहीं है इसलिए उसको घर में अग्नि जलाने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए गारपत्य अग्नि नहीं, उसने परित्याग कर दिया। गृहस्थ आश्रम परित्याग किया तो गारपत्य अग्नि का परित्याग कर दिया। और क्योंकि वह संन्यास ले लिया है, शिखा सूत्र का विसर्जन कर दिया, इसलिए वैदिक कर्म करने का अधिकार उसने खत्म कर दी। वैदिक कर्म करने का अधिकार खत्म हो गया, स्वाहा और स्वधा करने का अधिकार उसको, क्योंकि स्वाहा और स्वधा करने के अधिकार शिखा सूत्र वाले को है, शिखा सूत्र परित्याग करते ही स्वाहा और स्वधा करने का अधिकार उसको खत्म हो गया, तो आहवनीय अग्नि की भी उसने आवश्यकता नहीं पड़ी। आवनी अग्नि की आवश्यकता उसको होती है जो नित्य निरंतर स्वाहा स्वधा करता है, तो आवनी अग्नि खत्म हो गई। जब नहीं करना है तो आवनी अग्नि के बाद प्रथम आहुति दक्षिणा अग्नि में करनी चाहिए। ये आजकल जो घर घर में जगह जगह हवन करते हैं, गायत्री हवन कराते हैं, वह विधि से कराते हैं कि नहीं कराते हैं? अग्नि को पहले आहवनीय करनी है और आहवनीय अग्नि को प्रथम आहुति के लिए दक्षिणा अग्नि बनाकर तब उसमें आहुति दी जाती है, तब बाकी आहुति उसी दक्षिणा अग्नि में दी जाती है। ये वैदिक विधि है। क्योंकि उसने शिखा सूत्र परित्याग कर दिया तो स्वाहा स्वधा करना नहीं, इसलिए आहवनीय अग्नि और दक्षिणा अग्नि दोनों का भी परित्याग कर दिया, तो तीन अग्नियों का उसने, किसने, सन्यासी ने तीन अग्नियों का परित्याग कर दिया हुआ होने के कारण गतार्थ ये हुआ कि चतुर्थ जो अग्नि है, मसान अग्नि शमशान अग्नि है, उसका भी उसे निषेध कर दिया गया, वो भी स्वरतः परित्याग। क्योंकि सन्यासी वैदिक विधि से जीते जी ही आठ पीढ़ी मातृपक्ष के और आठ पीढ़ी पितृपक्ष के सभी को पिंडदान करने के बाद अंत में अपना भी पिंडदान कर चुका होने के कारण, अंत्येष्टि कर्म भी वो पूरा कर चुका होने के कारण, मरने के बाद अग्नि संस्कार की भी विधि नहीं है। 16 संस्कार वो सब जब सन्यास लिया तो जीवात्मा के जो 16 संस्कार हैं सन्यास अवस्था में पूरा हो जाता है। पूरा हो जाने के बाद फिर वह नारायण स्वरूप हो जाता है, इसलिए सन्यास के बाद वह नारायण स्वरूप होता है, तब उसका अभिवादन करने के लिए यही शब्द प्रयोग किया जाता है कि नमो नारायणाय। हर सन्यासी को अभिवादन करने का यही वाक्य है कि नमो नारायणाय, कि आप नारायण स्वरूप हो गए, क्योंकि 16 संस्कार मरने के पहले ही आपने पूरा कर ली है, सपिंडी आपने पहले ही कर ली है और दैहिक कर्म आपने पहले ही कर ली है, विरजा हवन में और दैहिक कर्म सब पूरा हो गया है, प्रेस मंत्र के बाद वो नारायण स्वरूप हो गया, तो फिर उस सन्यासी को जलाना निषेध किया। तो अब वो शरीर है उसका तो कहीं ना कहीं ठिकाना लगाना है, तो क्या करें? तो दो विधि है, यदि पवित्र नदी आदि है सन्निकट में कहीं उपलब्ध है तो उस शरीर को पवित्र नदियों में जल समाधि करके विसर्जन करो ताकि जलचर जीव उसको खा जावे, या फिर घोर कहीं जंगल है तो जंगल में ले जाकर छोड़ दो तो नवचर जीव उसको खा जावे, या फिर किसी जमीन में उसको समाधि दो, उसको थल समाधि कहते हैं। जल समाधि, थल समाधि और वायु समाधि, ये तीन ही समाधि का विधान शास्त्र में है। लेकिन कोई भी व्यक्ति मानता नहीं है कि जंगल खुले में छोड़ दें और चील गिद्ध स्याल कुत्ते उसको नोचें, ये उसको मन में नहीं लगता। तो फिर ये दो समाधि देने की चलन आज भी है, जहां पवित्र जल है वहां जल समाधि देते हैं, और कहीं पवित्र नदियां उपलब्ध न हो तो जमीन खोदकर थल समाधि दी जाती है। तो हम पुरानी स्मृति सुना रहे थे आपको, उस स्मृति के साथ इतनी सारी व्याख्याएं हो गई आपको, लौकिक व्याख्या इसलिए सुना रहा हूं कि आपके घर में कोई संत महात्मा आवे और संयोग से हो खुदा न खास्ता आपके घर में उस शरीर छोड़ दिया तो क्या करें? तो घबराना नहीं ना, घबराना नहीं है, हो सकता है कई बार ऐसी घटना घटी है, क्योंकि जिस घटना का हम स्मरण कर रहे हैं अभी वह इसी प्रकार की घटना से संबंधित घटना था। तो उस समय आप लोगों को क्या करना है? तुरंत वो सन्यासी शरीर छोड़ दिया तो दीवार के सहारे उसको ऐसे बिठा देना और पद्मासन लगा देना, बस सिर में त्रिपुंड लगा देना, समाधि लगाकर बैठा हुआ जैसा दिखेगा, बैठा है बैठा है, और गाड़ी कर लेना और ले जाके नर्मदा या गंगा जी भागीरथी में जल में छोड़ देना। अब क्योंकि बम्बई में तो जमीन ऐसे ही आसमान छू रही है, एक स्क्वायर फुट के लिए वो भी फ्लैट के स्क्वायर फुट, जमीन का स्क्वायर फुट तो कहां मिलने वाला है, तो 40 50 लाख 55 लाख हो गया एक स्क्वायर फुट फ्लैट की जमीन, और कहीं एक फ्लैट खरीद के वहां समाधि लगाना संभव नहीं होगा, जमीन खरीद के समाधि लगाओ तो जमीन है ही नहीं तो क्या करोगे? तो उसके लिए एक ही उपाय है कि ले जाओ गंगा जल, यहां नजदीक आपके नर्मदा है, ले जा सको तो सीधे हरिद्वार पुराओ गंगा जी, इलाहाबाद पुराओ पहुंचाओ, नहीं तो नर्मदा नजदीक है वहीं ले जाओ, ये सभी नर्मदा ले जाते हैं साधुओं को। तो उसी तरह पंजाब में एक महिला सन्यासी माता जी किसी के घर में थी तो वहीं शरीर छोड़ दिया उन्होंने, अब क्या करें? वो तो घबरा गए, तो फोन किया, क्या करें महाराज? तो बोले सीधे टैक्सी में डाल के गाड़ी में डाल के ले आओ हरिद्वार में, यहीं विसर्जन कर देते हैं नीलधारा में। तो बेचारे ले आए, तो आप लोगों को हम पहले संकेत दे रहे हैं, मान लो कि आज शाम को ही ये शरीर छूट गया तो घबराना नहीं, फाड़ से पद्मासन लगा के रख देना, और एक गाड़ी करके ले जाके नर्मदा गंगा जी में विसर्जन कर देना पत्थर बांध के, खूब गोद में चारों तरफ पत्थर डाल देना, पेटी बनाना लकड़ी का, और यदि लकड़ी का पेटी न बना पाए तो बोरी का कंथान ले लेना और डालना, उसी को गठड़ी बना लेना है, और चारों तरफ पत्थर डाल के छोड़ देना, तो जमीन में बैठेगा शरीर लाश पत्थर के चलते, तो फिर मछली खाएंगे भंडारा, खूब जलचर जीव खाएंगे। तो वो लेके तो आए, लेकिन वो गृहस्थ थे, गृहस्थी के संस्कार के अनुसार वो लंबा लेटा कर लिया, जैसे गृहस्थी लंबा ले जाते हैं, है? आदमी सोया जमी पर, लोग कहते मर गया, वो अपने था सफर में, वो आज अपने घर गया, लोग कहते मर गया, तो लंबा लेटा कर ले आए। अब वहां समाधि देनी विधि है तो पद्मासन में लगाकर बिठाना है, अब तो लंबा तो 8-10 घंटे में तो वो तो अकड़ गया लाश, तो अब पद्मासन कैसे लगाया जाए? हैं? तब वहां जल समाधि देते समय में आसन लगाना था, तो हमने जोर से उसके घुटनों में जोर से मारा एक पत्थर लेकर, हाथ में एक पत्थर उठा ली और एक हाथ से नीचे पकड़ लिया, एक हाथ से पत्थर से घुटनों में जोर से मारा, मारा तो उसके ढीले हो गए पार्ट पुर्जे, जब पार्ट पुर्जे ढीले हो गए तो ढीला हो गया तो दूसरे में मारा, दोनों ढीले हो गए, तो हाथ भी ऐसे लंबे थे तो यहां मारा जोर से पत्थर से, यहां मारा सब ढीले हो गए, नट बोल्ट तो नट बोल्ट कसा ही तो था वो, नट बोल्ट ढीले हो गए तो हाथ भी ढीला हो गया, पांव भी ढीला हो गया, तो बिठा दिया पद्मासन है। तो जब हम पत्थर मार रहे थे घुटने में तो उनके भक्त लोग कुछ आए थे, महिलाएं पुरुष भी थे, लेके जो आए थे उनके शरीर को, पार्थिव शरीर को, जब हम पत्थर मारने रहे थे, अरे रे रे रे रे, ये बाबा कैसा निष्ठुर है, कितना निर्दयी है, पत्थर से मार रहा है माता जी को, हे भगवान। अब माता जी वहां हो तब ना पत्थर से मारना न मारना इसके हिसाब करो है? वो तो पत्थर ही है, पत्थर के साथ पत्थर मारने में क्या आपत्ति हो? तो उनको तो वो अध्यास, पहले माता जी चैतन्य से संपर्क होने से उनका शरीर चैतन्य था तो ये मानते रहे, तो अभी भी वैसा ही है ऐसा मानते हैं, जबकि वो चैतन्य का संपर्क हट गया तो अब तो क्या हुआ, जड़ ही तो हुआ, तो अब क्या अरे रे रे रे कहने की क्या जरूरत थी? जब उनको पद्मासन लगाया और पेटी में रखा शरीर को, तो वो पेटी पानी में न उतरे, उसके चारों तरफ पत्थर रखना था, हमने कहा लाओ पत्थर, तो पत्थर लाने वाले पत्थर लाए और हमने ऐसे फेंक दिया वो पेट बक्सा के अंदर, उनके सिर में लगा जोर से, अरे रे रे ये तो मार डाला, अरे वो पहले मर सकी है मुर सकी है तो क्या मार डाला, तो सब लोग गाली देने लगे मुझे, अरे कैसा निर्दयी है, कैसा निष्ठुर है, कैसा साधु है, अरे माता जी के सिर में मारा पत्थर से। ले जी, जबकि हमारे सनातन धर्म की विधि है कि लाश को जलाते समय में हाँ कपाल क्रिया करनी पड़ती है, कपाल क्रिया समझते हो ना आप लोगों ने किया है कि नहीं है? कपाल क्रिया अपने मां बाप के किया नहीं किया पता नहीं, कपाल क्रिया डंडे से मारना चाहिए खोपड़ी में, जब लाश जलती है जलने के बाद जो खोपड़ी रहता है उसको मारो पत्थर से, फोड़ो कपाल को हाँ? उसको कपाल क्रिया बोलते हैं। ठीक है फोड़नी, जब फूटे इस तरह न मारो तो ऐसे टच कर देना, आजकल यही करते हैं, वो समझते हैं कि उनको ज्यादा चोट लगेगा जोर से पत्थर मारने से, ये अध्यास है ये उन्होंने। तो वो हमको ये प्रसंग याद आ गया, इस प्रसंग से शरीर के साथ चेतना का संबंध होने से शरीर चैतन्य जैसा दिख रहा है, इसमें जो चेतना भाव है चैतन्य के संयोग से आया है, लेकिन परमात्मा में सूझ सत्ता है और जो चेतना है वह किसी की संयोग से नहीं, जैसे रसगुल्ले में मधुरता, जलेबी में मधुरता, खांड के शक्कर के संयोग से आया है, लेकिन स्वयं शक्कर में मधुरता किसी और के संयोग से नहीं है, है? शक्कर में जो मधुरता है मीठापना है किसके संयोग से है? ये उसका अपना स्वरूप है। और रसगुल्ले में जो मधुरता है वो शक्कर के संयोग से है, जलेबी में जो मधुरता है मीठापना है वह शक्कर के चाशनी के संयोग से, चाशनी में जो मधुरता है क्या है वो उसका अपना स्वरूप है, चीनी की जो मधुरता है वो तो अपना स्वरूप है किसी के संयोग से नहीं है। इसी प्रकार से परमात्मा में अस्तिता होनापना और भातिता चैतन्यपना ये उसका स्वरूप है, और वही उपादान कारण है उस अस्तिता और भातिता स्वरूपभूत ये जो परमात्मा है वह ये सारे जगत का उपादान कारण है। तो पूर्व पक्ष ने प्रश्न किया था कि परमात्मा जगत का उपादान कारण है तो जगत के हर पदार्थ में परमात्मा की अनुभूति होनी चाहिए, लेकिन किसी को भी परमात्मा की अनुभूति नहीं होती है तो उपादान कारण नहीं मानना चाहिए। इसका उत्तर यहां दे रहे हैं, परमात्मा की अनुभूति हो रही है, नहीं मान रहा है इसीलिए, नहीं जान रहा है इसीलिए वो परमात्मा को ग्रहण कर रहा हूं नहीं मानता, क्योंकि जगत के किसी भी पदार्थ को ग्रहण करोगे तो पदार्थ के ग्रहण के साथ ये दो वस्तु आपके द्वारा गृहित हो रहा है। दो वस्तु क्या? अस्तिता भातिता, उस वस्तु की होनापना वस्तु के ग्रहण के साथ आपको ग्रहण हो रहा है कि नहीं? घड़े को ग्रहण करते समय मिट्टी का ग्रहण हो रहा है कि नहीं आपसे? आभूषण को ग्रहण करते समय में सुवर्ण का ग्रहण हो रहा है कि नहीं? इसी तरह वस्तु को ग्रहण करते समय वस्तु की सत्ता का ग्रहण हो रहा है कि नहीं? ये सत्ता ही परमात्मा है, इसीलिए सत्ता रहित कोई वस्तु कोई ग्रहण नहीं कर सकता है, मिट्टी रहित कोई घड़ा का ग्रहण नहीं कर सकता है, सुवर्ण रहित आभूषण कोई ग्रहण नहीं कर सकता है। इसी तरह सत्ता रहित किसी भी नाम रूप को ग्रहण नहीं कर सकता है। तो हर नाम रूप में पेपर वेट ये नाम और इस आकृति का ये रूप, ये दोनों में सत्ता और भाति ये उसके उपादान कारण से आया है। इसका उपादान कारण कौन है? परमात्मा। परमात्मा यहाँ किस रूप में गृहित हो रहा है? सत्ता और भातिता, प्रकाशित होना पना, वस्तु का होना पना और वस्तु का जाना जाना पना, ये दोनों परमात्मा से आया है। इसलिए परमात्मा से भिन्न ये नहीं है, जैसे मिट्टी से भिन्न घड़ा नहीं है, सुवर्ण से भिन्न आभूषण नहीं है, इसी तरह परमात्मा से भिन्न ये वस्तु नहीं है। परमात्मा का ग्रहण हो ही रहा है, इससे क्या सिद्ध हुआ कि सारे जगत का उपादान कारण परमात्मा ही है? ये बात इस तीसरे श्लोक के द्वारा शंकराचार्य जी स्पष्ट कर रहे हैं। सत्ता स्फुरत्ते भावेशु कुता गत्य संगते बिंबादि दर्पण न्यायात इत्थं पृच्छन् प्रबोध्यते। दो दृष्टांत दिया है, एक लोहे में गर्मी कहां से आई, तो इसको तो हर व्यक्ति यही कहेगा कि अग्नि संयोग से, अग्नि के संपर्क से आया है। लेकिन ये तो क्या हुआ कि मूर्त में अमूर्त का संयोग है, और ये जो संयोग से आया हुआ उष्णता, संयोग का तो वियोग होता ही है, संयोग का वियोग होता है। तब मूर्त अमूर्त संयोग, इसी तरह पहले लोहा होवे और उसके बाद अग्नि होवे, या पहले अग्नि होवे उसके बाद लोहा होवे, तब उन दोनों का परस्पर संयोग होवे, तब लोहे में अग्नि का संपर्क होगा, और तब कहेंगे कि ये लोहा गर्म है, लोहे में गर्मी का भाव प्रतीत होगा। तो इसी तरह शरीर अलग पहले सिद्ध है, आत्मा अलग पहले सिद्ध है, तो उस पहले सिद्ध शरीर में आत्मा का संयोग हुआ तब ये शरीर में चेतना दिखाई पड़ा, ऐसा माना जाए क्या? इससे क्या सिद्ध हुआ कि आत्मा से संयोग होने से पहले शरीर अलग था, ये मानना पड़ेगा, और बाद में आत्मा अलग था और आत्मा और शरीर का संयोग हुआ, क्योंकि अंत में आत्मा और शरीर का वियोग होने पर आत्मा अलग और शरीर अलग प्रतीत होता है। तो वेदांत इस प्रकार के संयोग जन्य अस्थि और भातिता का सर्वत्र अनुभव करना नहीं चाहता है। तब फिर ये किस तरह माना जाए? तो जैसे वृक्ष में उन बीज के सारे संस्कार वृक्ष में विद्यमान हैं, आपके नींबू में खट्टापन आया कहां से? उसके बीज में वो खट्टापना थे, वो संस्कार था, वही संस्कार उसके अंकुर में गया, वही संस्कार उसके पत्तों में, शाखा में, फूल में गया, और वही संस्कार उसके फल में विद्यमान हुआ, और वही संस्कार कालांतर में फिर दूसरे नींबू में जाएगा, वही संस्कार कालांतर में फिर तीसरे नींबू में जाएगा। ये संस्कार किसी प्रकार के दर बदर वस्तुओं में संक्रमण होता रहेगा। इसी तरह आत्मा की सत्ता और स्फूर्तता भी बीज से वृक्षों की तरह इसी तरह से माना जाए तो ये भी नहीं होगा। तो फिर कैसे है तो व्याप्त? तो वेदांत क्योंकि विवर्तवाद को मानता है, विवर्तवाद को मानने के कारण अन्य जितने भी दृष्टांत हैं वेदांत में मान्य नहीं होंगे। वो और दार्शनिक लोग भले मान लें तो वेदांत दर्शन नहीं मानता है। आत्मा की हर नाम रूप पदार्थ में सत्ता और स्फूर्णता का व्यापकता मानने का एक ही दृष्टांत है, जैसे विवर्तवाद। सर्प में होनापना कहां से आया? रस्सी से। सर्प दिखाई पड़ना कहां से आया? तो उसी रस्सी से। हाँ, डोरी में प्रतीयमान जो सर्प है उस सर्प के होनापना कहां से सिद्ध है? रस्सी से। दिखाई देनापना कहां से सिद्ध है? तो रस्सी से। अस्तिता और भातिता सर्प में उस रस्सी से आया है। रस्सी से भिन्न सर्प का अस्तित्व नहीं, रस्सी से भिन्न सर्प स्वतंत्र भासित नहीं होगा। इसी तरह विवर्तवाद जो अपने कारण में विवर्तित पदार्थ में जैसे अधिष्ठान व्याप्त होता है, ध्यान देना, मैं ये वाक्य को ध्यान दोगे तो वेदांत समझ जाओगे। जिस अधिष्ठान में जो वस्तु विवर्तित हुआ है, वह विवर्तित वस्तु में जिस तरह अपने अधिष्ठान के भाव व्यक्त होकर रहता है, उसी तरह ये सारे जगत के नाम रूपों में वह उपादान कारण भूत अधिष्ठान भूत उस परमात्मा सर्वत्र अस्थि और प्रकाश के रूप में ग्रहण हो रहा है, व्याप्त है। सत्ता स्फुरते भावेशु कुता गत्य संगते बिंबादि दर्पण न्यायात इत्थं पृच्छन् प्रबोध्यते। इसी को बोलते हैं यस्यैव स्फुरणम सदात्मकम असत्कल्पकम असत्कल्पार्थकम सदात्मकम भासते। ये अन्वय करना, जिसकी सत्ता और जिसकी स्फूर्णता, स्फूर्णता का अर्थ भासता, प्रकाशपना, जिसकी सत्ता और प्रकाशता को लेकर असत्कल्पार्थकम, असत नहीं, ध्यान देना, असत कल्पार्थकम, कल्पार्थक का अर्थ असत होता हुआ भी प्रतीत होने वाले को कल्पार्थक बोलते हैं। असत होता हुआ भी प्रतीत होने वाले वस्तु को असत कल्पार्थक बोलते हैं। असत कल्प असत के तुल्य, अर्थ माने प्रतीयमान पदार्थ, असत कल्पार्थक। तो असत जैसे खरगोश का सिंह, वो असत है, असत कल्पार्थक नहीं है, वह असत है, सत प्रतिशत असत है, असत कल्पार्थक नहीं। जैसे बंजा का पुत्र, वह सर्वथा असत है, असत कल्पार्थ नहीं। जैसे आकाश कुसुम, सर्वथा असत है, असत कल्पार्थ नहीं। लेकिन रज्जु सर्प सर्वथा असत नहीं है, असत कल्पार्थ है। सीपी में चांदी, वह असत नहीं है, अपितु असत कल्पार्थक है। असत होता हुआ भी प्रतीत होने वाले को असत कल्पार्थक कहते हैं, असत होने के कारण ही प्रतीत न होने को वह असत कहते हैं। असत और असत कल्पार्थ में इतना ही अर्थ है, इसलिए असत कल्पार्थ का नाम हो गया मिथ्या। असत होना अलग चीज है, मिथ्या होना अलग चीज है। मिथ्या को अप्रतीत नहीं कहते कहीं भी, प्रतीत होता है परंतु जिस रूप में प्रतीत हो रहा है उस रूप में वह नहीं रहता है, इसीलिए उसको मिथ्या कहते हैं। बंध्या का पुत्र तो प्रतीत ही नहीं होता है, इसलिए वह असत। रस्सी में जो सर्प है वह प्रतीत होता है लेकिन खोजने जाओ तो नहीं मिलता, इसलिए असत कल्पार्थक, इसलिए मिथ्या। वेदांत जगत को असत नहीं कहता है, असत कल्पार्थक कहता है, यानी मिथ्या कहता है। इस बात को फिर स्पष्ट करेंगे, और ज्यादा विचार करने जाएंगे तो समय बढ़ जाएगा, और आगे कल स्पष्ट करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
2: ओम नमः शिवाय।
0: You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org.
3: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Hindi Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Nayanmar Puranam. The title is Yeyargon Kalikkam Nayanar, presented by Singapore Shankara Narayanan. Thank you. Om Namah Shivaya.
4: Om Namah Shivaya. दोस्तों, अभी हम सुनेंगे एयरफोन कलिकामर संत की कहानी। इंद्रदेव के युग की बात है। चोल प्रदेश में कावेरी नदी के उत्तरी तट पर तिरुमंगलम नामक क्षेत्र में सेनापति रूप में राजकार्य करने वाले परिवार में कलिकामर का जन्म हुआ। कालांतर में इन्होंने भी सेनापति के रूप में बहुत कीर्ति प्राप्त की। कलिकामर एक निष्ठावान शिव भक्त थे। तिरुपुंकुर मंदिर में कलिकामर ने आवश्यक मरम्मत करवाई और वहीं सेवाकारी में लगे रहे। उनका दृढ़ मत था कि विभूति धारण करने वाले शिव भक्त के चरण युगल ही संसार में नित्य वस्तु हैं। भक्त सुंदर कथा का एक प्रसंग है जहां सुंदर ने अपनी पत्नी परवई के पास शिव को अपने दूत के रूप में भेजा था। इस घटना से कलिकामर के मन में सुंदर पर अत्यंत रोष का भाव था। उनका तर्क था कि सेवक सुंदर ने स्वामी शिव को दूतकारी देकर अपना सेवक बनाने की भूल की है और यह अक्षम्य अपराध है। वास्तव में सुंदर तो शिव के प्रति साक्ष्य भाव से भक्ति कर रहे थे, परंतु कलिकामर सुंदर के प्रति आक्रोश से युक्त थे। ईश्वर इच्छा प्रबल है। एक बार कलिकामर को असाध्य उदर रोग हो गया। स्वयं शिव ने स्वप्न में आकर कहा, वत्स सुंदर के आए बिना तुम्हारा यह रोग ठीक नहीं होगा। कलिकामर ने ईश्वर की इस बात को काटते हुए उत्तर दिया, भगवान कई पीढ़ियों से हम तुम्हें स्वामी और स्वयं को सेवक मानते आए हैं। सुंदर तो अभी कल के बच्चे हैं जो तुम्हारी कृपा के पात्र हुए हैं। सुंदर सभा में तुम्हारे प्रति कटु शब्द बोले, फिर भी तुम उन पर कृपालु हो। मेरे जैसे पुराने भक्त का इस नए भक्त द्वारा स्वस्थ होने के स्थान पर पीड़ा के साथ मर जाना श्रेयस्कर है। इधर भगवान ने सुंदर को कलिकामर के घर जाने की प्रेरणा दी। सुंदर कलिकामर के घर पहुंचे। उनको किसी बात की जानकारी न थी। वे सहज भाव से अपने साथियों सहित कलिकामर के घर की ओर चल दिए। यह जानकर कलिकामर ने तलवार से अपना पेट काटकर शरीर त्याग दिया। कलिकामर की पत्नी ने मृत शरीर को घर में छिपा दिया और आगत अतिथि और उनके साथियों का स्वागत किया। पर सुंदर को घटना का पता चल ही गया। इस आत्महत्या के लिए स्वयं को दोषी मानकर सुंदर ने अपने पेट काटकर अपने आप को भी ईश्वर लीला से पीड़ित जानकर अपना जान त्यागने की दृढ़ संकल्प कर लिया। पर चमत्कार हो गया, ईश्वर लीला से कलिकामर जीवित हो गए। प्रभु कृपा से दोनों भक्त घनिष्ठ मित्र बन गए। एयरकोन कलिकामर की कथा का वर्णन करते हुए पुरांतर सुकिलर ने 380 पदों में सुंदर के संदर्भ का वर्णन किया और कलिकामर का वर्णन 25 पदों में पूरा हो गया। भक्तों की विशेषता प्रकट करने के लिए यह एक अच्छा प्रसंग है। पेट दर्द पैदा करने वाले भगवान स्वयं पत्नी में आकर उनका समाधान देते हैं, पर भक्त उनके समाधान को नहीं अपनाते। अपने स्वीकृत मार्ग के लिए विघ्न डालने वाले चाहे ईश्वर स्वयं ही क्यों ना हो, भक्त प्राण उत्सर्ग करना श्रेष्ठ मानते हैं। इन्हें अपना लक्ष्य अपना सिद्धांत ही सर्वोपरि लगता है, परंतु प्रभु भी लीला द्वारा भक्त को अपनी कृपा का वरदान दे देते हैं। ओम नमः शिवाय।
0: ओम नमः शिवाय। Dear listeners of Shaivam.org Radio, the size of our audio collection continues to grow day by day. We now host more than 25,000 audio recordings. In order to make these extensive resources more accessible and beneficial to our radio listeners, we have reorganized our program schedule. Thirumurai Music and Thirumurai Discourses will be broadcast on Thirunariya Tamilosai. Philosophical Discourses and Periyapuranam Lectures in Tamil will be broadcast on Shivatattvam.
5: programs in languages other than Tamil will be broadcast on Shaivalahari. As a result of these changes, there will be some adjustments to program timings. We trust that you will kindly accept these schedule changes with understanding and patience. We also request you to encourage your relatives and friends to listen to and benefit from our radio services. Om Namah Shivaya.
6: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Saivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shivananda Lahari, presented by Adiguru Sankaracharya Ji. Thank you. Om Namah Shivaya.
7: Om Dhyaye Nityam Mahesam Rajat Girinibham Charu Chandra Vatansam Ratnakalpojjalangam Parasumrigavara Vetihastam Prasannam Padmasinam Samantakstutam Amaragunir Vyagrakrityam Vasanam Visvadhyam Visvabandhyam Nikhilabhayaharam Panjavakram Trinetram Narayanam Padmabhavam Vasishtam Shaktim Chatat Putra Parasarancha Vyasam Sukam Gaudapadam Mahantam Govinda Yogindra Matha Sasishyam Sri Sankaracharya Mathasya Padma Padancha Hasta Malakancha Sisyam Tantrotakam Bhartika Karamanyan Asmat Gurum Santatamanatosmi Visuddha Jnana Dehaya Trivedi Dibya Chakshuse श्रेयः प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे ओम शांति शांति

प्रेमपुरी आश्रम आयोजित कृष्ण कुमार दहिया गीता चिंतन माला अंतर्गत आदिगुरु शंकराचार्य विरचित शिवानंद लहरी इस स्तोत्र के आधार पर लगातार 4 वर्षों से चर्चा चल रही है। तो इस बार इस 100 श्लोक का स्तोत्र की व्याख्या पूरा करने का लक्ष्य है। अभ्यास के लिए श्लोक नंबर 91 गाड़ी स्टेशन में पहुंच रही है। आद्या विद्या हृद्गता निर्गता सिद्ध विद्या रिद्या हृद्गता त्वत्प्रसादात् सेवे नित्यं श्रीकरं त्वत्पदाब्जम् भावे मुक्तिर्भाजनं राजमौले दूरीकृतानि दुरितानि दुरक्षराणि दौर्भाग्य दुःख दुरहंकृति दुर्वचांसि सारं त्वदीय चरितं नितरां पिबन्तम् गौरी समामिह समुद्र सत्कटाक्षैः।

राजाओं के सिर मुकुट, संसार में जितने भी बड़े बड़े राजा हुए हैं, चाहे वो नरेश हो, चाहे वो देवेश हो, राजेंद्र हो चाहे देवेंद्र हो, सबकी शोभा सिर में मुकुट नहीं है तो उनकी किसी की शोभा नहीं है। राजाओं की शोभा उनके सिर में दिव्य रत्नों से युक्त मुकुट से होती है। अभिप्राय यह है कि भगवान शिव भक्ति यदि मस्तिष्क में न हो, विचार में न हो, वो सब क्षुद्र जीवन है। और जब राजाओं की गणना होती है, चाहे देवलोक के राजाओं की गणना हो, चाहे नरलोक के राजाओं की गणना हो, सबसे ऊपर भगवान शिव महाराज है, राजमौले। मौल शब्द का अर्थ होता है मस्तिष्क, सिर, सिर मुकुट। ये राजमौली संबोधन से भगवान शिव सर्वश्रेष्ठ हैं, ये भाव व्यक्त कर रहे हैं संबोधन से। ये राजमौली तत्प्रसादात, आपकी कृपा से, तत्प्रसादात, आपकी प्रसन्नता से, आपकी कृपा से, आद्या अविद्या हृदगता निर्गता आसीत, मुंडक उपनिषद में एक श्रुति आती है, मंत्र है, नायम आत्मा बलहीनेन लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन, एमे वेशा वृणुते तेन लभ्य तस्यै सा आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। अयम आत्मा बलहीनेन न लभ्य, ये आत्मा बलहीन व्यक्ति द्वारा प्राप्त करने योग्य नहीं है। नायम आत्मा बलहीनेन लभ्य न लभ्य, अयम आत्मा बलहीनेन न लभ्य। दोनों है, बलहीनेन भी प्रवचनेन भी है, दो जगह अलग अलग पाठ है। नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्य ये भी है, अयम आत्मा बहु प्रवचनेन न लभ्य, प्रवचनेन न लभ्य। जिस आत्मा को तुम चाह रहे हो, परमात्मा को तुम चाह रहे हो, हम चाह रहे हैं, वो आत्मा प्रवचन के माध्यम से मिलने वाला नहीं है। न बहुना श्रुतेना, जीवन भर सुनते रहने से भी वो मिलने वाला नहीं है। फिर महाराज जो मिलता कैसे है, तो वहां उत्तर दिया है उपनिषद ने, स्वयं उपनिषद ने

0: उसके उपलब्धि का माध्यम भी बता दिया है। एमे वेश वृणुते तेन लभ्य, जिसने आत्मा को जैसे शास्त्र ने वर्णन किया है वह परमात्मा, वह आत्मा जिसको ये चाहता है कि ये मुझे प्राप्त कर ले, वृणुते ऐसा आत्मा यम वृणुते, वह परमात्मा जिसका वर्ण कर लेता है, जिसका वर्ण कर लेता मतलब परमात्मा ये संकल्प करता है ये व्यक्ति मेरा अनुभव करे, ये व्यक्ति मुझे प्राप्त करे, मेरा दर्शन करे, मेरा अनुभव प्राप्त करे, एमे वेश वृणुते तेन लभ्य, तो उसी के द्वारा वो आत्मा उपलब्ध हो सकता है। ये बड़ा विचित्र मंत्र है, वह हमें वरण करे तब हम उसको प्राप्त करें, हम उसको वरण करें और हम उसको प्राप्त करें ऐसा नहीं है, वो हमारा वरण करे तब हम उसको प्राप्त करें। देखो इस मंत्र का ही अर्थ है, तो उसको क्या पड़ी है कि वो हमें वरण करता फिरे, उसको क्या पड़ी है? वो हमको खोजता फिरे, हमको वरण करता फिरे है? उसको क्या पड़ी है? क्या हमें वरण किए बिना उसका काम रुक रहा है क्या? और शायद आप और हम तो यही मानते हैं कि महाराज हमारे बिना आपका काम कैसे चल रहा है, तो कभी कभी तो हमें ऐसे भ्रांति होती है कि मन में ना होता ईश्वर के संसार की व्यवस्था सब गड़बड़ाती, ये तो हम हैं इसीलिए हम सब कर रहे हैं। जबकि ये बात नहीं है, उसकी व्यवस्था अपने ढंग की है। इस अनंत अनंत जीव समूह में हमारी गिनती किस में है बोलो? इस अनंत अनंत जीव समूह में हमारी गिनती किस में है? कहां हमारी गणना होगी? फिर भी हर व्यक्ति यही समझता है कि मैं प्रथम व्यक्ति हूं गणना के क्रम में। ये अहम है। और उपनिषद का मंत्र यह है कि वह स्वीकार करे तब हमको प्राप्त हो, उसकी कृपा हो तो हमें वो प्राप्त हो। पुराणों की कथा है, बड़ी विचित्र विचित्र कथाएं हैं पुराणों में। कहते हैं ब्रह्मलीन स्वामी अखंडानंद जी महाराज जी ने ऐसे मनोरंजनात्मक भाव से व्याख्या किया है, उनकी शैली बड़ा विचित्र है। कहते हैं कि एक बार जीवात्माओं को और परमात्मा दोनों के बीच में खेलने की इच्छा हुई, क्रीड़ा करें, मनोरंजन करें, तो कौन सा खेल खेले? बोले छिपने का खेल खेले, छुपा छुपी खेल खेले। अब लोग हिले कि नहीं, नहीं पता नहीं क्या खेले होंगे। बच्चे लोग करते हैं ना, कुर्सी के नीचे टेबल के नीचे छुप जाते हैं। तो बोले कि ठीक है खेलते हैं। तो दो टीम हो गए, एक परमात्मा अकेला एक तरफ और सारे जीवात्मा एक तरफ। परमात्मा ने कहा कि तुम लोग सब छुप जाओ और हम अकेले खोजेंगे तुमको। जीवात्मा ने कहा कि ठीक है हम छुप जाएंगे। तो जीवात्मा छुपने लगे, अपने अपने समझ के अनुसार, अपने अपने हिसाब से सब जीवात्मा छुपे। कहां छुपेंगे भाई, जीवात्मा कहां छुपेंगे? कोई हाथी के शरीर में छुप गया, कोई चींटी के शरीर में छुप गया, कोई मक्खी के शरीर में छुप गया, कोई मच्छर के शरीर में छुप गया, कोई कॉकरोच के शरीर में छुप गया। यही तो छुपने का स्थान है। जीवात्मा छुपेगा तो कहां छुपेगा? यही सब छुपेगा। और तुम और हम कुछ समझदार थे तो इन इन शरीरों में छुप गए, है ना? बहुत से जीवात्मा थे, अपने अपने छुपने के कारण ये अलग अलग 84 लाख योनि हो गए, ये सब में छुप गए। और सब जीवों ने कहा कि महाराज अब हम अच्छी तरह छुप गए हैं, पता लगाओ कि हम कहां छुपे हैं, पता लगाओ। तो परमात्मा ने कहा,
1: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू shaivam.org रेडियोस 24/7 spiritual channels from shaivam.org. Om Namah Shivaya.
2: Om Namah Shivaya. Dear listeners of shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Pushpadan's Shiva Mahima Stotra in Hindi, presented by Swami निष्ठानंदजी सरस्वती। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।
3: भारतवर्ष की शिक्षा क्या? वेदाध्ययन, स्वाध्याय अध्येतव्य, ये विधि वाक्य यावत मनुष्य के लिए वेदाध्ययन की बात करता है। किंतु आजकल तो ये है नहीं, क्योंकि हमारे यहां क्या है, हमारी शिक्षा जो है ये प्रत्यक्ष लाभ की अनदेखी करके अप्रत्यक्ष यानी कि पारलौकिक और मोक्ष लाभ के लिए ही ज्यादा है। हमारे यहां विद्या का जो स्वरूप है, विद्या के द्वारा जो प्राप्त होने वाला सुख है, वो पारलौकिक सुख या मोक्ष के सुख को ध्यान में रख के हमारे यहां जो है शिक्षा पढ़ाई जाती है। अब ये पारलौकिक सुख और मोक्ष सुख दिखता तो है नहीं, और इस लोक में वो कष्ट से प्राप्त किया जाता है, तो हम लोगों का ये ह्रास नहीं आ रहा। हम लोग तो ये सोचते हैं कि हम इस प्रकार की शिक्षा प्राप्त करें जिससे इह लोक बढ़िया से चल जाए, इह लोक में सुखी हो जाए, इह लोक में जो है कोई विघ्न या कोई कष्ट न रहे। तो हम लोग जो इस समय जो प्रचलित विद्या है, वो विद्या का फल इह लोक है या पारलौकिक या मोक्ष भी है? बस इहलौकिक है, इसलिए कहते हैं मेरा लड़का बढ़िया से पढ़ के निकल जाए, बढ़िया से उनको सर्विस लग जाए, फिर हम शांति से रहे। किंतु क्या यही जीवन है क्या? इससे आगे कोई जीवन नहीं है? ये शरीर छोड़ने के बाद हमको कहीं जाना ही नहीं है क्या? और वहां का कोई विचार नहीं करना है क्या? मोक्ष के बारे में या हम इस ये प्रपंच से छूटे, जन्म और मृत्यु के चक्कर से छूटे, उसके लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि वो दिखता नहीं है, इसलिए हमको उसके विचार करने की फुर्सत ही नहीं है। इसलिए भगवान को अर्जुन ने पूछा कि भगवान, जब शास्त्र विधि को नहीं जानते हुए भी परंपरा से महापुरुषों के संदर्शन से, उनके समागम से, उनके वाक्य के ऊपर विचार करके या श्रद्धा करके जो कर्म करते जा रहे हैं, तो भगवान उनकी निष्ठा सात्विक है, राजसिक है या तामसिक है? तो भगवान ने कहा कि देखो अर्जुन, ऐसा है कि जो निष्ठा की तुम बात कर रहे हो, वो निष्ठा के निर्णय में कारण है उनकी श्रद्धा। किस प्रकार की उनकी श्रद्धा है, उससे वो व्यक्ति की निष्ठा का निश्चय होगा। इसलिए भगवान ने कहा श्रद्धा मयो यम पुरुष यो यत श्रद्धा स एव स। पुरुष श्रद्धा से श्रद्धामय है, इसलिए उनकी श्रद्धा किस प्रकार की है, उससे उनकी निष्ठा निश्चित की जाएगी। इसलिए सात्विक, राजसिक और तामसिक श्रद्धा, तीन प्रकार की श्रद्धा से व्यक्ति कर्म करता है, यज्ञ भी करता है, दान करता है, तप करता है, आहार करता है, इन सब में ये तीन चीज कारण होती है। यदि सात्विक श्रद्धा है तो वो सात्विक यज्ञ करेगा, सात्विक दान करेगा, सात्विक तप करेगा, सात्विक आहार करेगा। यदि उनकी निष्ठा या श्रद्धा राजसिक है तो वो राजसिक यज्ञ करेगा, राजसिक दान करेगा, राजसिक तप और आहार करेगा। यदि उनकी निष्ठा तामसिक है तो वो तामसिक यज्ञ, दान, तप, आहार वगैरह सारी क्रिया वो उसी अनुसार करेगा। इसलिए भगवान ने इन यज्ञ, दान, तप, आहार आदि का भगवान श्री कृष्ण ने 17वें अध्याय में तीन तीन प्रकार बताया। इसलिए हम उनको जाने कि ये सात्विक, राजसिक और तामसिक जो प्रकार है उसमें हमारे लिए क्या इष्ट है, हम अपने को नापे, देखे। जैसे कोई चीज को हम आंख से देखते हैं, ये देख रहा है कि ये टेबल है, किंतु हम कोई पूछे कि उनकी साइज बताओ, फुट से इंच से साइज बताओ, तो आप आंख से देख करके बता सकेंगे? आप कहेंगे अच्छा मेजर टेप मंगा दीजिए, फिट मंगा दीजिए, मैं बता दूंगा अब कितना है। क्या तुमको आंख से नहीं दिख रहा है? तो कहें आंख से दिख तो रहा, लेकिन उनका माप कितना है वो आंख से नहीं दिखेगा, उसके लिए चाहिए मेजर टेप। चाहिए मेजर टेप ला करके बता देगा ये 3 फीट है या 4 फीट है, जो भी नाप आएगा वो बता देगा। ठीक इसी प्रकार से हम जो ये यज्ञ कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, आहार आदि सर्व क्रिया कर रहे हैं, वो आंख से तो बड़ी अच्छी लगती है कि हाँ कर रहे हैं इतना जरूर, किंतु वो सात्विक कोटि की है, राजसिक कोटि की है या तामसिक कोटि की है, वो हम आंख से नहीं बता सकते हैं। जैसे माप के लिए मेजर टेप चाहिए, वैसे ही ये सात्विक आदि जो भेद है, उन भेदों को जानने के लिए गीता का अध्ययन चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने इसको यहां बताया, उसको यदि हम पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा कि हम ये यज्ञ, दान, तप, आहार वगैरह जो भी क्रिया कर रहे हैं वो सात्विक कोटि के, राजसिक या तामसिक कोटि के, इसका निश्चय हम फिर कर सकेंगे। अब क्रिया तो बहुत है, आहार आदि भगवान ने सबके 3 प्रभेद बताए, किंतु हम लोग जो विचार करेंगे केवल तप के बारे में। तो भगवान ने इसी बात को कहते हुए तप के भी 3 प्रकार बताए। तप क्या है? तो भगवान जो है ये तप के बारे में, तप सात्विक, राजसिक और तामसिक प्रकार का है, किंतु भगवान जो है पहले ये बताना चाहते कि ये जो तप है अर्जुन, वो 3 प्रकार से तपा जाता है। शरीर से भी तपा जाता है और वाणी से भी तपा जाता है और मन से भी तपा जाता है। तो पहले हम लोग ये जाने तप के ये 3 प्रकार, के शरीर से तपा जाने वाला, मन से तपा जाने वाला और वाणी से तपा जाने वाला जो है वो तप का स्वरूप क्या है। भगवान देखिए पहले शरीर से तपा जाने वाला तप क्या है, वो 14वें श्लोक में बता रहे हैं। आप लोगों के पास गीता है तो आप देखिए, भगवान श्री कृष्ण देखो कहते हैं शरीर से जो तप किया जाता है उनका तप का स्वरूप क्या है, क्या शरीर को सुखा देना। देखिए इससे आपको पता चल जाएगा कि आखिर तप का स्वरूप क्या है। भगवान श्री कृष्ण शरीर के तप के बारे में क्या कहते हैं, संसार में चाहे तप की कैसी भी प्रसिद्धि हो उसको एक साइड में रख दीजिए और गीता के संदर्भ में आप देखें कि शारीरिक तप क्या है। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्य महिंसाम च शारीरम तप उच्चते। देखिए शरीर से तपा जाने वाला तप, शरीर से हम तपस्वी है वो यदि देखना है तो क्या करना चाहिए, ये इनमें से हमारे अंदर कौन से गुण है। यदि इनमें से ज्यादा हमारे जीवन में गुण आए तो हमें बिल्कुल कह सकते हैं, शरीर हृष्ट पुष्ट होते हुए भी हमें कह सकते हैं कि हम तपस्वी है। देखिए क्या कहा, देव पूजनम, द्विज पूजनम, गुरु पूजनम और प्राज्ञ पूजनम। हम लोग पूजन तो करते ही रहते हैं, पूजन से तो हम विरत ही नहीं है। अब किसके पूजन से हम शरीर से तपने वाले तपस्वी कहे जाएंगे, तो देखिए देव पूजनम, देव पूजनम जो देवता का पूजन करता है वो मानो शरीर का तप कर रहा है। जो देवता, देवता से क्या, ब्रह्मा विष्णु शिव सूर्य और शक्ति, सनातन धर्म में ये पंच देव की पूजा उपासना प्रसिद्ध है। तो ये पांचों देव की जो पूजा उपासना पूजन करना वो है शारीर तप। अब देखिए इसलिए हमारे यहां जो है इन देवताओं की पूजा प्रसिद्ध हो प्रचलित हो, इसलिए हमारे यहां जो है इस प्रकार की सनातन धर्म की प्रणाली चली कि देवताओं की पूजा के लिए भी, पहले तो हमारे यहां यही कहा कि रोज तीन बार पूजन करना चाहिए, दो बार सुबह और शाम, कम से कम दो बार सुबह और शाम तो करना ही चाहिए, सूर्यास्त और सूर्योदय के समय भगवान की पूजा स्मरण करना चाहिए। जो रोज नहीं कर पाता है उनके लिए कहा हफ्ते में एक बार, तो कोई ऐसे एक वार को ले लीजिए जो सभी वार जो है देवताओं के संबंध में ही है हमारे यहां, चाहे आप रविवार से लेकर शनिवार तक देख लीजिए, उन सभी वारों के साथ देवता जुड़े हुए हैं। इसलिए हमको देवता ध्यान में रहे, हफ्ता में भी नहीं कर रहे हैं तो कहा कि 15 दिन में तो कर ही सकते, पूर्णिमा और अमावस्या को तो करना ही चाहिए। और कहते हैं कि हम लोग बंबई वासी समय कहां, महीने में भी नहीं हो पाता है, तो जब ऋतु परिवर्तन होता है या मास की संक्रांति होती है उस दिन जो है करना चाहिए। ऋतु परिवर्तन 2 महीना में होता, उस दिन भी नहीं तो कहा 6 मास में एक बार तो कर ही लो, उत्तरायण दक्षिणायन का अंत या शुरुआत होती है उस दिन कर लो, तब भी नहीं तो कहते हैं कि साल में एक बार तो कर ही लो, या कोई ऐसी पुण्यतिथि देवताओं का जन्मदिवस रामनवमी है, जन्माष्टमी है या और कोई देवताओं की जयंती है, उस समय तो जो है सारे साल में कुछ भी नहीं किया है तो एक दिन में वो निपटा दो, उस दिन पूरा का पूरा वो देव पूजन में निकालो। यहां तक कि साल भर में भी नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे, उससे आगे भी व्यवस्था है हमारे यहां, क्या करेंगे, कुंभ मेले में जाकर के स्नान कीजिए। वो आता है 6 साल में एक जगह, 6 साल में तो आता ही है, यहां तक कि 12 साल की हमारे यहां व्यवस्था है, 12 साल में कुछ नहीं किया तो 12 साल में एक बार एक ही जगह पड़ने वाले कुंभ में जाकर के स्नान कर लीजिए, देव पूजन कर लीजिए, तो वो 12 साल का लाभ मिल जाता है। यह है सनातन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता कि व्यक्ति चाहे किसी भी समय, किसी भी देश, किसी भी परिस्थिति और किसी भी काल में देव पूजन कर सकता है। तो देवता का पूजन वो शरीर संबंधी तप है और द्विज का पूजन। द्विज का पूजन क्या है? द्विज क्या है? जिसका दो बार जन्म होता है, समझ में आए? द्विज का अर्थ है जिसका दो बार जन्म होता है। दो बार जन्म, आप कहेंगे कि क्या वो दो बार गर्भवास करता है क्या? तो एक तो गर्भवास से जब उनका निस्सरण होता है तो उस समय वो एक जन्म हुआ, फिर दूसरा जन्म उपनयन संस्कार से होता है। उपनयन संस्कार से ही व्यक्ति जो है द्विज बनता है, दूसरी बार उनका जन्म होता है और वे वेदाध्ययन के लिए योग्य बन जाता है। फिर उपनयन संस्कार होने के बाद उसके ऊपर तीन ऋण चढ़ जाते हैं। एक देवता का ऋण चढ़ जाता है, एक ऋषि का ऋण चढ़ जाता है और पितृ का ऋण चढ़ जाता है। ये उपनयन संस्कार से पहले वो बालक है, उसके ऊपर कोई ऋण नहीं है, किंतु जैसे उपनयन संस्कार हुआ फिर वो ये तीन ऋणवान हो जाता है। फिर उनके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है कि मैं ये तीन ऋण से उऋण होऊं। इसे फिर आगे के लिए उनके लिए वेदाध्ययन है, वेदाध्ययन में वो वेद का अध्ययन करता है और उसके बाद वेद में जो अधीत कर्म है वो कर्म की जिज्ञासा करता है और जिज्ञासा के लिए वो कर्मानुष्ठान करने के लिए जैमिनी शास्त्र प्रणीत वेदांत वो मीमांसा का विचार करता है, जैमिनी सूत्र का, और तदनुकूल फिर वो कर्मानुष्ठान करता है। कर्मानुष्ठान करते हुए गृहस्थ आश्रम के बिताते हुए आगे जाकर के वो मोक्ष, इस तरह से प्रक्रिया पूरी। तो इस तरह ये द्विज है। द्विज का अर्थ है जैसे कहा, और द्विज का अर्थ है ब्राह्मण भी, क्योंकि उपनयन संस्कार तो त्रैवर्ण को होते हैं, केवल ब्राह्मण को होते ऐसा तो है नहीं, इसलिए ब्राह्मण भी ले सकते हैं, क्योंकि ब्राह्मण क्या है? वेद का अध्यापक है और या तो वैदिक कर्म को करवाने वाला है। उनके द्वारा यदि आप कर्म करते तो वो कर्म हम तो जानते नहीं, तो उनके द्वारा किया गया है वो उसमें हम श्रद्धा करके करते हैं तो वो जो हो जाता है सत्कर्म हो जाता है। और देखिए गुरु का पूजन, गुरु क्या है? गुरु से श्रोत्रि ब्रह्मनिष्ठ और वैसे गुरु के पूजन के बारे में यहां पर टीकाकारों ने केवल गुरु शब्द का अर्थ जो ज्ञानदाता गुरु ही नहीं, मातृ पितृ आचार्य ऐसा कहा, माता पिता और आचार्य का पूजन हम लोग करते हैं क्या? माता पिता और आचार्य का पूजन ध्यान रखते हैं ना हम, माता और पिता का कि नहीं रखते? अच्छी बात है, ये होना ही चाहिए। माता और पिता का पूजन यानी कि तस्वीर का पूजन नहीं हो, नहीं तो आजकल देखने में तो ये आता है कि तस्वीर में तो बहुत बड़ी टंगी हुई है, बढ़िया हार भी पहनाया हुआ है, कोई आता है तो कहते हैं देखो ये हमारे माता जी की तस्वीर है, ये पिताजी की तस्वीर है, बहुत अच्छे थे, वो जीते थे पानी पिलाया, तो कहते नहीं, श्राद्ध पक्ष तो चल ही रहा है ना, जीते जी पानी पिलाने के लिए हमारे पास समय नहीं है। चार भाई है तो माता और पिता के चार हिस्से कर देते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी के चार हिस्से हो गए तो और माता और पिता के भी चार हिस्से कर देते हैं। हमारे यहां माता और पिता को सेवा के लिए कहा कि उसका हरदम ध्यान रखना है, उसको कोई तकलीफ न हो, लेकिन आजकल क्या हो गया? मदर्स डे, फादर्स डे, साल में एक बार जाकर के वो गिफ्ट दे दो, 364 दिन उनका कुछ भी हो गए। और कहते हैं हमने मदर्स डे मनाया, फादर्स डे मनाया, बड़े जोर शोर से प्रचार हो रहा है इसका। कितनी बड़ी विडंबना है कि हरदम जब माता और पिता का ध्यान रखा जाता है, हमारे वहां ऐसा आदर्श है, आज ये हालत है कि माता और पिता की हालत अब मैं कहने की तो ज्यादा जरूरत है ही नहीं। तो गुरु के पूजन के अंदर माता और पिता का पूजन ये एक बहुत बड़ी तपस्या है। माता और पिता का पूजन क्या है गीता के संदर्भ में क्या है? शरीर का तप है। आप और कुछ भी कर रहे हैं और माता और पिता दुखी है तो वो शरीर का तप नहीं है। शरीर का तप सबसे बढ़िया तप यह है कि माता पिता और गुरु की, जैसे देव द्विज गुरु और प्राज्ञ, उसमें ये माता पिता भी अंदर है, उनका पूजन ये शरीर का तप है। और प्राज्ञ का पूजन लीजिए, प्राज्ञ का पूजन, प्राज्ञ क्या है? जो गुरु से भी व्यतिरिक्त है, देव से द्विज से भी व्यतिरिक्त है, किंतु जो तत्वविद है, जो तत्वविद है उनकी भी पूजा। और इतना ही नहीं, कहने के लिए तो बहुत है किंतु मेरे पीछे समय भी पड़ा हुआ है, और ये शरीर का जो है संपूर्ण तप भी मेरे को बता देना है, क्योंकि 3 श्लोक आज करने हैं और 3 श्लोक कल करने हैं, इसलिए थोड़ा आगे भी बढ़े। देखो शौचम, ये भी शरीर का तप है। शौचम क्या है? बाह्य और आभ्यंतर शुद्धि को कहते हैं शरीर का तप। बाह्य शुद्धि क्या है? देखिए हम लोग जो बाह्य शुद्धि में तो जो है बहुत आगे है, किंतु वो बाह्य शुद्धि जो है पवित्र है वहां पर हम पीछे हैं। कि हम जो बाह्य बहुत शुद्धि रखते हैं घर में, व्यवहार में, बाहर से कपड़े में, शरीर में, किंतु वो शुद्धि पवित्र कोटि की है उस बात का ख्याल नहीं है। भोजन में हम पवित्र भोजन कर रहे हैं, पीने में हम पवित्र पी रहे हैं, भोजन के हम पवित्र खा रहे हैं, वहां कोई शुद्धि वो ख्याल नहीं है। क्या खाद्य पवित्र है या अपवित्र है उनका विचार आजकल बिल्कुल समाप्त सा होता जा रहा है। लोग यदि अपेय और अखाद्य खाए तो उनको अच्छा समझा जाता है। ये सब जो है इनकी व्याख्या बदलती जा रही है इस समय, बड़ी विडंबना है। आगे और भी भगवान ने बताया आर्जवम। आर्जवम क्या है? देखिए जीवन में हर तरह से शरीर से, मन से और कर्म से सरलता, दंभ का अभाव, सरलता, बिल्कुल ऐसा सरल रिजु जो हमारे पर सब विश्वास करे। औरों के विश्वास की हमको जरूरत तो है, किंतु हम अपने व्यवहार को विश्वासार्ह नहीं बना पा रहे। इस प्रकार से जो है हम अपने को ऐसे उलझा रखे हैं कि हमको विश्वासार्ह होने की आवश्यकता हमको जरूर दिखती है, किंतु विश्वासार्ह लक्षण हमारे अंदर आने चाहिए, वो लक्षण की बहुत कमी है। इसलिए हम फिर क्या कहते हैं? चद्दर ओढ़ लेते हैं। चद्दर समझ में है? विश्वासार्ह की चद्दर। और ऐसा कहते हैं देखो हम विश्वासार्ह है, और फिर कोई फंसता है तो चद्दर निकाली जाती है। समझ में आ गया? बहुत कहने की जरूरत तो नहीं है ना? यही है विश्वास। तो सरलता, इसे इनका अभाव हो उसको कहते हैं सरलता। इसलिए आर्जवम का अर्थ है अंदर से और बाहर दोनों तरफ से सरल जीवन।

से समझ में आए, प्रार्थना है भगवान की कि भगवान मैं अपना जीवन सरल बनाऊं इसलिए मैं पापों से दूर रहूंगी। तो ये आर्जवम। और भी देखिए ब्रह्मचर्यम, अहिंसा इत्यादि। ब्रह्मचर्य क्या है? ब्रह्मचर्य है देखिए निषिद्ध।